एफएमएन साउथ शिमला दो मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांगद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांगद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभाव

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 90.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं संवेद स्वर में गाई इस मातृ वंदना से।

संवेद स्वर में अभी आपने सुनी है मातृवंदना और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना को आप आगे बढ़ाते हैं। आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा को। इस भक्ति रचना के लिए रचना पंडित विश्व प्रकाश की है।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुने पंडित विश्व प्रकाश शर्मा की ये भक्ति रचना। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण को। गीत, शब्द और रचना हरिओम शरण की ही है।

0: जगजीत सिंह और साथियों के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 90.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का हमारा चिंतन कार्यक्रम केंद्रित है पर्यावरण पर। चिंतक है श्री सुरेंद्र तिवारी।
1: परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में ये परिवर्तन सृष्टि के पालन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाए रखने के लिए होते हैं, ताकि धरती पर ताप सहने योग्य रहे, भरपूर मात्रा में साफ वायु, शुद्ध जल और उपजाऊ जमीन उपलब्ध हो सके और मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। इसके लिए प्रकृति में परिवर्तन विभिन्न भू रासायनिक चक्रों के द्वारा एक अंतहीन प्रक्रिया के रूप में लगातार चलते रहते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती समय में जनसंख्या बहुत कम थी। मानव अपेक्षाएं और चाहनाएं प्रमुखता जीवित रहने के संघर्ष की थीं। मानव प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए रह रहा था। अपने जीवन संघर्ष के लगभग 20 लाख वर्षों के लंबे इतिहास के दौरान भी उसकी गतिविधियां पर्यावरण को बहुत ही मामूली रूप से प्रभावित करती रहीं। ये प्रभाव स्थानीय थे। ये तो पिछली आधी सदी में ही मानव ने इतनी क्षमता हासिल की कि वो पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने लगा। पर्यावरण में परिवर्तन एक बहुआयामी घटना रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप वनों का तेजी से विनाश, तकनीकी ज्ञान के विस्फोट और आर्थिक उन्नति के तरीकों ने मिलकर पर्यावरण को हानि पहुंचाने में अपनी सीधी अथवा परोक्ष भूमिका निभाई है। फिर रहवासी कॉलोनियों के आसपास उद्योगों की अनियंत्रित बढ़ोतरी ने स्थिति को काफी पेचीदा बना दिया। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और जीवाश्म ईंधन के जलने से उठने वाली गैसों ने हमारे वायुमंडल को बुरी तरह प्रदूषित करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप स्मॉग, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो प्रभाव और ओजोन छिद्र जैसी त्रासदियां जन्म ले रही हैं। प्रदूषण ने अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र हरे भरे ग्रह पृथ्वी की हालत गंभीर बना दी है। वायुमंडल के साथ ही धरती की नदियों, तालाबों, पोखरों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। अतिशय दोहन से प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं। भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इन विनाशकारी प्रभावों के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने वाले पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके हम अपने सिर से रक्षा साया

0: फलस्वरूप सन 2100 में पृथ्वी का तापमान आज से लगभग 3.5 डिग्री अधिक हो जाएगा और इससे दुनिया के 1/5 हिस्से की समाप्ति का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह लगातार खिसकते जा रहे ग्लेशियरों की गति से गंगोत्री के 2035 तक पूरी तरह से सूखने की संभावना बन गई है। उजड़ते वनों ने अनेक बहुमूल्य जड़ी बूटियों, पेड़ और वन्य जीव प्रजातियों को भी विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। इस समय जरूरी है हमारा विकास धारणीय हो। ये वही संकल्पना है जो हमारे वेद पुराणों की ऋचाओं में सदियों पहले से कही गई। भारतीय मनीषियों ने प्रारंभ से ही माना कि समाज की भौतिक प्रगति प्रकृति के साथ मानवीय हारमोनी के रूप में गुंथी रहनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा भी था, इस धरती पर हर व्यक्ति की जरूरत के लिए काफी है, परंतु यह पूरी पृथ्वी महज एक व्यक्ति के लोभ के लिए भी अपर्याप्त होगी। हमें इस लोभ, लालच और लिप्सा पर रोक लगानी ही होगी, अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी ही होंगी। आइए हम अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारें। हे धरती मां, जो कुछ मैं तुमसे लूंगा वो उतना ही होगा जिसे तू पुनः पैदा कर सके। तेरे मर्मस्थल, तेरी जीवनी शक्ति पर मैं कभी भी आघात नहीं करूंगा।
1: पर्यावरण पर केंद्रित था हमारा आज का कार्यक्रम चिंतन। चिंतक थे श्री सुरेंद्र तिवारी। FM बैंड 9.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। संगीत संयोजन सतीश भाटिया।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

0: श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण अभी आपने सुना संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी। टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे pH मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है, टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो NPK का होता है। इसके अलावा NPK के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियां या कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जांच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किन की कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में, कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले

0: करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास के अवस्था में जो फास्फोरस तत्व तो होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम वेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की, जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या स्प्रे भी किया जा सकता है इनका। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
1: टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर कार्यक्रम कृषि सामयिकी में आपको भी जानकारी दे रहे थे पुष्पेंद्र सिंह। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं, ये वक्त है हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को जानने का। आपको हम बता दें अब से बस थोड़ी सी देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा सुनी जा सकती है। 7:20 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम रोजाना आप सुना करते हैं प्रातः 7:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा 8:30 पर और फिर 9:20 पर। इसमें आप सुनेंगे अपनी ही फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत। बच्चों के लिए उनका कार्यक्रम बाल सभा हम लेकर आएंगे सुबह 9:00। इसमें बच्चों से हम करेंगे कुछ जरूरी चर्चाएं और कुछ प्रेरणादायक बातें। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुनी जा सकती है सुबह 10:00। सुगम संगीत में आज सुनिएगा कुछ गजलें, विभिन्न कलाकार होंगे इसमें। 10:30 पर फिल्म संगीत होगा और 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

हमारी दोपहरकालीन प्रसारण सभा में दिन में 1 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम महिला कार्यक्रम में आज आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगी। इसमें चर्चाएं शामिल रहेंगी और कुछ गीत भी हम आपको सुनवाएंगे और इसमें एक चर्चा भी होगी और खाना खजाना क्रम में आप सुनेंगे बरसात में पकौड़ों की भरमार और सुनेंगे वेज पकौड़ा बनाने की विधि। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करी

कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5 बजे। इसमें आज कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगी कार्यक्रम युववाणी में, और कुछ गीत संगीत होगा। और इसके साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, जल है तो कल है, वार्ताकार होंगी कुमारी शिवांगी तोमर।

0: हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आज संध्या 7:21 पर ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम होगा चौपाल। इसमें आज आप सुनेंगे कुछ चर्चाएं और एक साथी भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे, मनोरोग कारण लक्षण एवं बचाव। इसमें जानकारी आपको देंगे डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती का अनुप्रसारण। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न हुआ। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी

0: मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ स्वर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। श्रोताओं, हमारा भारत देश, जी हाँ, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा प्यारा वतन संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखता है। यहाँ विविध भाषा भाषाएं, जाति प्रजाति, बोली, लोक शैलियाँ, लोकगीत, लोक कला, लोक नृत्य इत्यादि प्रचलित हैं और इन सभी से हमारी विविधता परिलक्षित होती है और इन्हीं से हम एक अलग अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और यही नहीं, क्षेत्र विशेष में अलग अलग जीवन शैली है जो अपने आप में बहुत खास है। पहनावा, भोजन और पर्व त्योहार अपनी अलग अलग छटा बिखेरते हैं। अभिप्राय यह है कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति प्रजाति, भाषा, बोलियां, लोक कलाएं, लोक साहित्य आदि में आश्चर्यजनक व अभूतपूर्व विलक्षणता परिलक्षित होती है। यही हमारे विशाल भारतवर्ष की महती विशेषता है। अनेकता में एकता बनाए रखना और राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए ही हम सबका, जी हाँ, हम सबका एक होना आवश्यक है। हम सभी सबसे पहले भारतवासी हैं, यह भावना हमारे अंदर रची और बसी होनी चाहिए। हमारे हृदयों में ये भावना हमेशा रहनी चाहिए, अर्थात परस्पर एक दूसरे की भावनाओं, विचारों तथा अपेक्षाओं को स्वीकार करते हुए आदर एवं सम्मान की भावना बरकरार हमें रखनी होगी और ऐसा हमें करना ही होगा, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है तब ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाया करती हैं। परिणाम स्वरूप देश की एकता और अखंडता को आघात पहुंचता है और फिर इस प्रकार के कारक देश के विकास और प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। वास्तव में ये वैचारिक मतभेद तब उत्पन्न हो जाया करते हैं जबकि प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के अनुयायी आपसी मुद्दों को तूल देने लगते हैं। तब राष्ट्रीय एकीकरण को छिन्न भिन्न होने का खतरा पैदा होने लगता है, क्योंकि देश में व्यक्तिगत स्तर के विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का होना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है, जो देश को मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि जब हम सभी एक होंगे, एक होकर देश के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए आगे आएंगे, उस बारे में न केवल आगे आएंगे और न केवल सोचेंगे बल्कि उसके लिए कर्मरत होंगे, प्रयासरत होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और इसलिए हम में से प्रत्येक को देश के विकास व प्रगति को महत्वपूर्ण समझते हुए

देश की ओर अग्रसर होना होगा। देश हित में यही हमारा सच्चा योगदान होगा। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास व प्रगति और उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने स्तर से इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि जब हम आगे आएंगे और अपने स्तर से अपने कार्यों को अंजाम देंगे तभी आगे हमारा राष्ट्र प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और अगर यूं ही हम आपसी वैमनस्य में लगे रहे, अपने अपने आप को हम एक दूसरे से बढ़कर समझने लगे, तो फिर कहाँ हमें समय रह पाएगा कि हम देश के लिए सोचें, जबकि हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश हित के लिए सोचें और देश हित में काम करें। कुछ ऐसी ही आशा और उम्मीदों के साथ विराम आज की इस चर्चा को। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघुवार्ता हिंदुस्तान हमारा, FM बैंड 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन more than 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4,067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

आणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम एंड साधुशम भूमि का हॉट्स पर प्रातः के 7:20 हुए हैं। लेकिन प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी को सुनवा रहे हैं आपको फिल्म प्रिंस के। इस गीत को लिखा है फारूक कैसर ने और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। लीजिए सुनिए फिल्म प्रिंस का ये गीत।
1: संसार सुहाना लगता है मत होश हवा मत वाली फिजा। संसार सुहाना लगता है कर ले ना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है मत होश हवा

0: फिल्म प्रिंस का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पश्चात।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब
4: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभिजीत सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को, आनंद बख्शी का गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, और इससे मिले फिल्म सीता और गीता।

0: पटाके साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: खटाके संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, खटाके संग संग।

0: सीता और गीता, इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को, और अभी जी सुनिए फिल्म मर्यादा में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। आनंद बख्शी का गीत है, संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने दिया है।
1: आजा के आ गई

ये थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर फिल्म मर्यादा के इस दो गाने के लिए। और अब लीजिए सुनिए शबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को एस एच बिहारी के लिखे इस गीत के लिए। इसे हमने लिया है फिल्म तेरी मेहरबानियां से। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तेरी मेहरबानियाँ। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:45 हुए, लीजिए सुनिए सूचना परत दैनिक कार्यक्रम। नमस्कार।

कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी सुनने वालों को परवीन खान का हार्दिक अभिवादन। स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। श्रोताओं, प्रायः जून के अंतिम सप्ताह से बारिश का दौर शुरू हो जाता है, कभी प्री मानसून और मानसून, लेकिन बारिश का दौर शुरू हो ही जाता है और जुलाई में अच्छी बारिश होने लगती है। बारिश का जल प्रकृति और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए वरदान होते हैं। बारिश का जल पौधों की बढ़वार और उनकी जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए श्रेयस्कर होता है। इसलिए बारिश के ऐसे ही मौसम में पौधरोपण करना बेहतर होता है। इसी के मद्देनजर संपूर्ण भारतवर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य से आए इस नाम में वन का अर्थ वन यानी जंगल और महोत्सव अर्थात एक बड़ा त्योहार। इसलिए यह केवल वन महोत्सव ना होकर भारत का एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जिसके तहत मानसून के आरंभ में सभी लोग स्कूल, कॉलेज, कंपनियां और सरकारी निकाय, सामाजिक संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर से वृक्षारोपण किया

आपने भी इस उत्सव में प्रतिभाग किया होगा। और यदि अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं तो अपनी सोच को विराम दीजिए और कर दीजिए शुरुआत वृक्षारोपण की, पौधरोपण की, पौधों को लगाने की, ताकि प्रकृति के बनाव श्रृंगार में उसकी शोभा बढ़ाने में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस अनुकूल मौसम में हमें सिर्फ पौधरोपण करना होता है, शेष कार्य प्रकृति स्वयं कर लेती है। यही कारण है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव से नामित किया गया।

इस महोत्सव को मनाने की शुरुआत स्वतंत्र भारत के तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री, वकील, लेखक और भारतीय विद्या भवन के संस्थापक डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी द्वारा सन 1950 में की गई।

जन जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य भी था। आज जबकि हमारे पर्यावरण को खतरा है, वृक्षों वनों की संख्या द्रुत गति से कम होती जा रही है, तब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ती जा रही है कि हम अपने अपने स्तर से वन महोत्सव को एक उत्सव के रूप में लें। धरती पर पेड़ों का होना हम सब के लिए हितकारी है। पेड़ जो हमें जीवन देते हैं, हर तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। इन्हीं से प्राकृतिक सुषमा है, नदियां हैं, झरने हैं और जल है और हमारी सांसें हैं। तो हमारी इन सांसों को बरकरार रखने के लिए हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें मिलती रहे, इसलिए वन वृक्षों से, प्रकृति से, धरती से प्रेम कीजिए। प्रकृति हमारी सहचरी है, हम भी उसे कुछ ना कुछ देने का भाव रखें ताकि बदले में वह हमें बहुत कुछ, जी हाँ बहुत कुछ दे सके और देती है। तो इस पुनीत कर्म में जुट जाइए, आज से नहीं बल्कि अभी से। अपने ऑफिस के कैंपस में, स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों और घरों के आसपास, और इतना ही नहीं अपने घर की छत, बालकनी और आंगन में भी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पौधों को लगाएं। इससे घर के आंगन की सुंदरता भी बढ़ेगी और माहौल भी बहुत ही प्यारा सा लगेगा। धरती निखरेगी तो हंसेगी, खिलखिलाएगी और सुंदर नीले गगन के तले धरती की सुंदर छटा निखरती और बिखरती रहेगी।

जिले में खरीफ फसल 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विगत 1 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इस हेतु किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए अपने आवेदन करें। कृषि विभाग द्वारा 31 जुलाई तक फसल बीमा माह मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को योजना की जानकारी देना, बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसान बैंक, सहकारी समिति, सीएससी और ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम हायरिंग सेंटर, हस्तशिल्प और ग्राम उद्योग जैसी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, मिलावट अथवा यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की गुप्त सूचना देने वाले को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर की जा सकती है। यह योजना आगामी 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। शिकायत करने हेतु सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 155253 155253।

सरकार ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय नए परिसर और इसमें होने वाले

मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंते स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-2027 हेतु आवेदन प्रारंभ किए हैं। इसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 1,00,000 रुपए तक का ऋण और 25% अर्थात अधिकतम 20,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस हेतु शिवपुरी जिले में 8 हितग्राहियों का लक्ष्य पूर्ण करना है। और अब मौसम का रुख करते हैं। मौसम की जानकारी में आपको बता दें कि आज संध्या समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ फुहारे या हल्की बारिश पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। और इसके साथ ही अब समय होता है आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से अपनी रेडियो मित्र प्रवीण को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

0: सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का प्रसारण भी किया गया। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर

0: देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी

के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा, शिवाबाई, वर्षाबाई, पूनम, मोहिनी कुशवाहा और इनका पूरा परिवार। ये पत्र हमें मिला है पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना के हमारे श्रोताओं का। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म यादों की बारात, इस फिल्म का ये गीत। आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाज़ है। मजरूर साहब ने गीत को लिखा है, राहुल दा ने धुन तैयार।

यादों की बारात इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म जबरदस्त के इस गीत के लिए गीत को लिखा है मजरूह साहब ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने। सुनने के लिए पत्र हमें लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे और समस्त खर्चे परिवार ने। लीजिए आप सभी सुनिए अपने पसंद पर फिल्म जबरदस्त का ये दो गाना।

0: फिल्म जबरदस्त में अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार को। कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के पश्चात।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब लिए सुनिए जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले, मोहम्मद रफी, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी और साथियों ने। गीत को लिखा है मजरू साहब ने और ध्वनि पर फिर से राहुल देव वर्मन की। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और समस्त वर्मा परिवार ने लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए जमाने को दिखाना है फिल्म का

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी और साथियों को, और आप लीजिए सुनिए सलमा आगा को फिल्म निकाह के इस गीत के लिए। हसन कमाल का गीत है और तर्ज बनाई है संगीतकार रवि ने। सुनने के लिए पत्र में लिख भेजा है, जय ही रमन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, अशोकनगर के हमारे इन श्रोताओं ने। विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकुबई कुशवाहा, निशा कुशवाहा, प्रियंका, ईशिका, कपिल, ब्रजभान कुशवाहा, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण राय अकबर, दातार सिंह शेखावत और खुशी कुशवाहा ने। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुने फिल्म निकाह का ये गीत।

ये थी सलमा आगा फिल्म निगाह के इस गीत के लिए। अब आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र को एक नया रिश्ता फिल्म के इस गीत के लिए। अल्फाज निदा फाजली के हैं और तर्ज बनाई है खयाम साहब ने। सुनना चाहते हैं आप सब महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म एक नया रिश्ता।

एक नया रिश्ता, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज़ में। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं और अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम।

जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और अभी इस वक्त आप हमें बिल्कुल सुन रहे होंगे, और क्योंकि आप उठ गए होंगे और बिल्कुल फ्री होकर के, अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी हमें जानकारी मिल जाए, थोड़ी से हम मनोरंजन कर लें और अपनी दीदी को सुन लें और उनको उनकी बातों को सुनकर हम कुछ एक बातें बिल्कुल अपने आप में उतार लें, सहेज लें और उनको आगे के लिए रखें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हमें वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी है। आप सभी स्कूल जाते वक्त देखते होंगे कि जहाँ जहाँ वृक्ष हैं, और बहुत विशाल वृक्ष हैं, और वहाँ से अगर आप निकलकर पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, या फिर अपनी स्कूल बस से जा रहे हैं, तो जहाँ पर भी ऐसी गर्मी में जो धूप होती है ना, तो उसमें जो बस निकलती है पेड़ के नीचे से, तो आपको बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा एहसास होता है कि वहाँ छाँव हो जाती है और चिलचिलाती धूप से राहत मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि जो वृक्ष हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने उपयोगी हैं। जी हाँ, हम सब के लिए हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे छोटा बच्चा भी जानता है कि पेड़ हमारे लिए प्राणवायु, जी हाँ, जीवनदायिनी, जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और ये हम सभी के लिए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वृक्षों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वृक्ष क्या है कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ना बच्चों? तो जो वृक्ष हैं उनको हमें ये चाहिए कि नए वृक्षों का, यानी कि पौधों का हमें रोपण करना चाहिए, लगाने चाहिए। छोटे छोटे पौधों को नर्सरी से ला करके हम अगर रोप दें अपने घर में, अपने घर की छत पर, गमलों में, या फिर आप बिल्कुल एक अपना बना लें कि सोच के रखें कि नहीं, हमें जब आप प्रण करेंगे कि हमें एक वृक्ष, एक पेड़ लगाना ही है, तो आपको चाहिए कि आप एक पेड़ विद्यालय के नाम लगाएं। जी हाँ, एक वृक्ष विद्यालय के नाम आप ज़रूर ही लगाएं, और इससे भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। और अभी बच्चों, ये अनुकूल मौसम है वृक्षों को लगाने का, पौधरोपण करने का, वृक्षारोपण करने का, क्योंकि अभी अभी सही है कि कभी बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश का मौसम तो है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश के इस मौसम में, इस अनुकूल मौसम में आप वृक्षारोपण करें। कोई एक दिन और कोई एक समय अपने जो टीचर्स हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उनसे लेकर आप उससे एक कर लें, उसका डिसाइड कर लें कि आपको कब वृक्षारोपण और ये अभियान, ये आयोजन आपको कब करना है, और आप अपने टीचर की सहायता भी ले सकते हैं बिल्कुल, और वो भी इससे बेहद खुश होंगे। और कई स्कूलों में तो ऐसा हो भी गया होगा कि हमारे प्यारे बच्चों ने वृक्षारोपण किया होगा और उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे मिट्टी में, ज़मीन में, धरती पर रोपा होगा। और फिर जब आप उस स्कूल में पढ़ेंगे ना, जब तक तब तक वो जो छोटा सा पौधा आपने रोपा है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर वो फलदार वृक्ष होगा तो आप उसके

फल भी खा सकेंगे। तो आप ज़रूर ही करें। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो वृक्ष हैं उनसे हमारा पर्यावरण हमेशा सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है और प्रदूषण मुक्त रहता है। इसलिए अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना ही होगा। न सिर्फ वृक्षारोपण करना होगा बल्कि वृक्षों का, पौधों का संरक्षण और संवर्धन भी हमें करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। तो आप बिल्कुल करें। प्यारे बच्चों, आपने देखा है ना कि अभी जैसे आपको इमेजिन हो रहा होगा कि बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप चाहते हैं तो जब आप स्कूल जा रहे हैं होते हैं तो वहाँ पर प्यारे प्यारे से पौधे, हरी हरी घास, कुछ फूलों के पौधे आपका स्वागत कर रहे होते हैं। लगता है आपको जैसे ये आपको देखकर मुस्कुरा रहे हों, और कभी कभी आपको बहुत सुंदर से, खूबसूरत से रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन करता है ना आपका कि हम इनको तोड़ लें और हम इनको अपने पास रख लें। और फिर जब आपका स्पोर्ट्स का, जब आपका खेल का पीरियड होता है ना, तो जब आप खेलने जाते हैं तो हरी हरी घास पर चलना और वहाँ पर बैठना, कूदना और झूलों पर खेलना बहुत ही मन के आपको लुभाता है, क्योंकि बारिश के इस मौसम में हरी हरी घास भी वहाँ जहाँ जहाँ मैदान में है वहाँ आपको बहुत प्यारा लगता होगा। तो और घर के आंगन में, घर की छत पर, बालकनी में भी आपके घर में बहुत सारे प्यारे प्यारे से, खूबसूरत से, सुंदर सुंदर से फूल ज़रूर ही लगे होंगे। और जहां बात की है हमने फूलों की, तो आप भी, जी हां बिल्कुल, हमारे प्यारे बच्चे भी कहीं कभी क्या फूलों से कम हैं? जी हां, आप भी हैं हंसते खिलखिलाते फूलों की तरह। कभी जब आप नाराज़ हो जाए, किसी चीज़ से गुस्सा हो जाए, तो लगता है कि आपको ये कहकर जल्दी से जल्दी मना लिया जाए।

प्यारे बच्चों, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और एक बात ज़रूरी कि आप इसलिए हंसते खिलखिलाते रहें क्योंकि हमारे जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो भी कभी कभी स्कूल जाने के लिए आनाकानी करते हैं। बिल्कुल स्कूल जाने में उन्हें रोना आता है, कई तरह की बहानेबाजियाँ, और फिर जब उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता है ना, तो वो थोड़े से उन्हीं दे और उदास से हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और जो आपका स्कूल समय है उसका मैनेजमेंट में लेकर के उसको, यानी कि उसका प्रबंधन बहुत अच्छे से करना है कि आपको बिल्कुल समय पर स्कूल पहुंचना है। अगर आप स्कूल बस से जाते हैं तो बस स्टॉप पर आपको समय से पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से सारे बच्चे लेट हो जाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो स्कूल समय में अपने टाइमिंग का, हर चीज़ को लेकर, जैसे आप पहुँच जाते हैं, फिर आपको अगर पढ़ाई करनी होती है, आपको क्लास वर्क करना होता है, तो उसमें भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कितने टाइम शेड्यूल में ये काम आपको करना है। तो बिल्कुल आप स्कूल के समय में जब प्रबंधन करेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर कभी आपको ये बहाना भी नहीं आएगा, कभी आप ये बहाना भी मम्मी से नहीं करेंगे कि हमें आज नहीं जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं होता है, तो इस वजह से भी उनको ये बहानेबाजी आ जाती है कि आज उनको स्कूल नहीं जाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक बात कि जब आप स्कूल जाते हैं या घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अभी बरसात नहीं हो रही, वो एक अलग चीज़ है, पर बरसात का मौसम है और कभी भी बरसात हो जाती है। ये आपने भी देखा होगा कि बरसात कभी भी आ जाती है, और जब बरसात आती है तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। तब जबकि आप सड़क पर या किसी रास्ते में चल रहे हों, जब भी आप सड़क पर चलें, तो बरसात में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टूटी हुई अगर सड़क होती है, कहीं गड्ढे हो रहे होते हैं, तो बारिश की वजह से वो गड्ढे और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनमें फिर पानी भर जाता है, और जल भराव के कारण हमें वो एकदम से सही नज़र नहीं आता है कि वहाँ गड्ढा है या कुछ और है। तो अगर जहाँ पर भी ज़रा सा भी पानी भरा हो, तो वहाँ पर सावधानी के साथ चलें। और अगर आप साइकिल चला रहे हैं या आप स्कूटी वगैरह कुछ चलाते हैं, हमारे बड़े बच्चे जो हो जाते हैं तब, तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश का पानी होता है, तो वो आसपास के चलते हुए लोगों पर उसके छींटे ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप जाएं तो रेन कोट को अवश्य अपने साथ रखें, या फिर छाते को अपने साथ रखें, क्योंकि बारिश की संभावना कभी भी होती है, बारिश कभी भी आती है। तो बरसात के मौसम में छोटी छोटी सी सावधानियां जब हम रखते हैं तो हम भीगते नहीं हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में नहाना अलग बात है और भीगना

मतलब एकदम से भीग जाना, सडनली बारिश आ गई और आप भीग गए, वो दूसरी चीज़ है। उससे क्या होता है कि आपको घर जाने का पता नहीं होता है कब जाना है, तो इसलिए आपको भीगना ज़रा भी नहीं है। नहाने का आनंद अगर आप बारिश में लेते हैं भीगने का आनंद, तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप भीगने का आनंद लेकर, बारिश में भीगने का, नहाने का आनंद लेकर तुरंत ही घर में आते हैं और फिर से वॉशरूम में नहाकर अपने कपड़े फ़ौरन ही बदल लेते हैं, और बदलना भी चाहिए। जब आपके कपड़े गीले हो जाएं तो उनको तुरंत ही बदल लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। और आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नियमित रूप से स्कूल जाना है और अपना वर्क करना है। इसलिए हमारे प्यारे से बच्चों को बहुत ही सावधान और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, और किसी भी कारणवश उनको ज़रा भी रोना नहीं है। हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना है, कुछ भी हो, पर हमें आपको, हमारे प्यारे बच्चों को रोना ज़रा भी

तो सुना प्यारे बच्चों, आपने कभी भी रोना नहीं है। कैसा भी कुछ हो, कैसी स्थिति आए, हमेशा हर स्थिति का पुरजोर डट कर मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है। यही है हमारे बच्चों की पहचान और हमारे बच्चों की शक्ति। तो हमारे बच्चे, हम ये उम्मीद करते हैं कि कभी भी नहीं रोएंगे, हर डर का, हर समस्या का डट कर मुकाबला करेंगे, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब घड़ी हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही कि हम आपसे और बात करें, तो अपनी रेडियो दीदी परवीन को दीजिए अनुमति। प्यारे बच्चों, जय।

अभी बच्चों के लिए प्रसारित किया गया उनका कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9:20 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हम आप ही की फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए प्यार का मौसम। इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को मजरू साहब ने गीत को लिखा है। राहुल देव बर्मन ने धुन तैयार की है और सुना चाहा है आप सबने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। लीजिए आप सुनिए प्यार का मौसम। इस फिल्म का

प्यार का मौसम। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। अभी जिसने ये मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अनंत बख्शी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। इसको सुनने के लिए खत हमें लिख भेजा है गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर शिवपुरी से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, छोटू, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव और समस्त नामदेव परिवार ने। आप सभी सुनिए फिल्म राजपूत में मोहम्मद रफ़ी और

फिल्म राजपूत में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। शुरुआत इस फिल्म का गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज़ से है। राम भरद्वाज का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसे सुनना चाहा है ग्राम पेपर सभा शिवपुरी से वीरेंद्र सिंह धाकड़, धर्मेंद्र सिंह यादव, जितेंद्र मुंशी, सुनील वर्मा, रिंकू धाकड़, सोनू कल्याण और इनके बहुत से साथियों ने। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म शुरुआत का ये दो गाना।

अनुराधा पौंडवाल और मनहर उदास को अभी आपने सुना फिल्म शुरुआत के इस गीत के लिए। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अब लीजिए सुनिए फिल्म प्यासा सावन में लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को संतोष आनंद का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद ग्राम बापोश धरो तहसील कॉलरस के हमारे ये श्रोता माया यादव, अवी रावत, अनन्य रावत, विमल शर्मा, भरत शर्मा, उमा गोस्वामी, सुहानी गोस्वामी और शिव नारायण अग्रवाल। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म प्यासा सावन का ये।

प्यासा सावन इस फिल्म का गीत अब है आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। अनोखा रिश्ता इस फिल्म में लीजिए सुनिए आशा भोसले और सखियों को। आनंद बख्शी का गीत है, संगीत राहुल दा का। फरमाइश आप सबकी। ग्राम दावरदेही पोस्ट सनोरा तहसील करेरा से आशा, शोभित, मुस्कान, पंकज, बंटी, प्रियांश, नीलम और इनके बहुत से साथी। आप सभी सुनिए फिल्म अनोखा रिश्ता।

अनोखा रिश्ता फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सखियों को। कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के रूप में आपको सुना रहे हैं एक मैं और एक तू। इस फिल्म का ये गीत आवाज आशा भोसले की है, आनंद बख्शी का गीत है, संगीत राहुल दा ने दिया है और पसंद आप सबकी है। ग्राम रौनीजा से राजेश वाल्मीकि, विजय वाल्मीकि, अरविंद राजन, डॉक्टर महेश जैन, कल्लू जैन और इनके बहुत से साथी।

एक मैं और एक तो फिल्म के इस गीत के साथ है कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से कुछ ही पलों में।

0: बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, आलेख है गणेश कुमार बाविस्कर का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। SDRF की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले

0: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ओटीपी, यूपीआई और केवाईसी फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे डीबीटी से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के एनआईसी कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, ईकेवाईसी, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में डीएपी, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल का।
2: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ गजलें। लीजिए पहले ये गजल सुनिए भूपिंदर सिंह की आवाज़ में, रचना बशर नवाज।

0: अभी आप सुन रहे थे नीना और राजेंद्र मेहता के स्वर में सुदर्शन फाकिर की लिखी ये गज़ल। और अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल को इस गज़ल के लिए। लेकिन इससे पहले ही सुनते हैं ये एक छोटा सा संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को, संत दर्शन जी के शब्द थे। और इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:23 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। अनूप घोषाल को सुनवा रहे हैं, गुलजार साहब की रचना है, RD बर्मन की धुन है और इसे हमने लिया है फिल्म मासूम से।

अनूप घोषाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मासूम के इस गीत के लिए। सत्यमेव जयते इस फिल्म में अब लीजिए सुनिए एस जानकी को। फारूक कैसर का गीत है बप्पी लहरी का।

फारूक कैसर का लिखा गीत अभी आपने सुना एस जानकी की आवाज़ में। इसे हमने लिया था फिल्म सत्यमय जयते से। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और सुरेश वाडकर को आनंद बख्शी के लिखे और राहुल दा के संगीत में सजे इस गीत को हमने लिया है फिल्म डकैत से। लीजिए सुनिए आशा भोसले और

0: आशा भोसले और सुरेश वाडकर को अभी आपने सुना फिल्म डकैत केस गीत के लिए, और गीत आपको सुनवाएंगे संतराल के पश्चात।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है
1: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।

0: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
0: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है।

0: किशोर कुमार को अभी अपने सुना फिल्म कटी पतंग के स्केप के लिए। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 102 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण
1: है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

दिल से निकली है जो बात वो गानों में ढल जाती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी कोई पुराना नगमा पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल ना हो। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी।

0: तो फोन उठाइए, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
1: सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
0: लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है।
0: मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे पे, तो अच्छी बारिश हुई थी
0: जी।
1: और अभी उमस थी, तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल छाए हैं, हो सकती है कई बारिश हो सकती है, माने ज्यादा उमस भी है, तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम के पानी बरस जाए, अपनी खेती बाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू हो जाए।
0: जी, बहुत जरूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। और आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
1: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है दीदी, और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद धान लगेगी।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
0: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
1: नहीं दीदी, क्या है दीदी 19 के जो गीत है
0: जी,
1: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर कुमार हुए, मोहब्बत अजीज हुई
0: जी,
1: तो इनके गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है। लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत। नमस्ते।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जुड़े हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान गांव का नाम अंजल बुगला।
0: पूरन जी, वहाँ मौसम कैसा है राजस्थान में?
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे हैं और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, और खेतों में भी वो बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं, कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाच पड़ गई मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे। अपना
1: जी
0: ध्यान
1: मैडम
0: रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली, और उसमें एक गाना गाने की बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से
1: हेलो
0: हमारी
1: मैम,
0: बात हो
1: मैं
0: रही
1: काव्या
0: है?
1: बात कर रही हूँ। काव्या?
0: काव्या, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर रही
0: सतना से। काव्या, क्या करती हैं आप?
1: हूँ। मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या
1: जी,
0: पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है
0: अरे, बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी?
1: मैम। तैयारी तो सही है, बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी, इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तेरी मेरी कहानी, बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी, किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी, साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है।
1: थैंक
0: आपने
1: यू मैम।
0: आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: ओम प्रकाश प्रजापत बोल रहा हूँ मैडम।
0: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
1: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
0: खरगोन, मध्य प्रदेश।
1: जी मैडम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम। पानी, बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई है और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे। जी
0: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: मैडम, अभी घर पे ही है।
0: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना सुना दिए जी, ब्लैकमेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
0: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। नमस्ते।
1: जी मैडम।

0: हेलो नमस्कार, कालीचरण
1: कालीचरण यादव ग्राम संदलपुरात्री से। जी
0: यादव जी, कार्यक्रम
1: जी
0: फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अच्छे मैडम, आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: गाना सुनने के लिए तो आपने फोन किया है, गाना तो हम
1: जी
0: आपको
1: जी
0: सुनवाएंगे ही क्योंकि आज कार्यक्रम यही है। पहले आपसे बात तो कर लें हम।
1: हाँ, बात कर ले आप।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे मैडम,
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है इस समय आपका?
1: समय भी गर्मी बहुत पड़ रही है मैडम,
0: बारिश का मौसम है? बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश बहुत हो रही है ग्वालियर में, बहुत बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो मौसम तो सुहावना होगा ना कालीचरण जी।
1: गर्मी जाना पड़ रही है, मौसम मौसम ठंडा है पर गर्मी जाना है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पान की खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, संदलपुर आखिरी पास गाँव मैडम मेरा ग्वालियर पास में, पान
0: अच्छा,
1: की खेती करता हूँ, देसी पान होता हमारे गाँव में। जी,
0: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
1: हाँ खिला दे पान उनको।
0: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी क्या सुनना चाहते हैं?
1: जीवन मृत्यु पिक्चर गाना सुनवाना, चिल मिल चिल मिल सितारों का आंगन हो।
0: आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैडम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी,
1: जी मैडम,
0: उज्जैन से कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम तो भोपाल आकाशवाणी को आज से नहीं, करीब 25-30 सालों से सुन रहे हैं मैडम।
0: तो बस हम चाहते हैं ये आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: जी मैडम जी, अब तो अच्छा लगता है, अब तो आकाशवाणी भोपाल DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे पुराने दौर में,
0: जी
1: अब रेडियो का धीरे धीरे जैसे खैर चलन तो बहुत है, पर अब रेडियो पे कम सुनाई देते हैं। अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आपके प्रोग्राम की मतलब जो अपडेट मिलती रहती है फेसबुक पर हमें
0: जी
1: प्रोग्राम की।
0: डिजिटलाइजेशन होने के कारण देखिए कितना फायदा है कि दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं।
1: जी जी मैडम जी, और अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपके फोन करे गीत सुने वह भी अच्छा लगता है, और ये फोन वाले प्रोग्राम हैं और जो भी परिचर्चा आती है सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं मैडम।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है लोकेंद्र जी?
1: मैडम जी, अधिकतर तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ, और एक बात, आपकी गीत हमारे वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विषय, अलग अलग विषय आते हैं ना,
0: जी
1: उस पर परिचर्चा होती है, सभी श्रोता मित्रों की विचार सुनने को
0: जानने को
1: मिलते
0: मिल जाते
1: हैं,
0: हैं। जी
1: जिसमें बात तो श्रोता मित्रों की रहती है और गीत आपके रहते हैं।
0: हाँ जी, तो मतलब आपको फोन इन प्रोग्राम ही ज्यादा पसंद है।
1: जी जी मैडम जी, बिल्कुल।
0: जी तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए।
1: ये गाना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब, ये नसीब गोविंदा वाली है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसमें गाना है शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं।
0: तो ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इसके पीछे की कोई वजह है?
1: मैडम जी, बहुत जगह मैंने ये गीत की चॉइस की है पर मुझे कहीं गीत मिला नहीं, पर मैंने आज सोचा कि भोपाल आकाशवाणी पर फोन लगेगा तो यह गीत की चॉइस करूंगा।
0: अच्छा,
1: और
0: इस
1: नहीं तो कुछ दोस्त भी है मेरे,
0: हाँ जी, नाम लीजिए उनका, बताइए।
1: राम राम बाबू मालवी जी है भोपाल से, प्रेम सिंह जी हैं और भगवान सिंह जी हैं और शारदा प्रसाद जी।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और साथ ही आपके सभी दोस्त भी इस गीत का आनंद लेंगे।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते,
1: हम बोल रहे हैं पंडित शिवनारायण तिवारी सागर से।
0: शिव नारायण तिवारी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, मौसम भी मौसम बढ़िया है।
0: हाँ जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है, तो मौसम का आनंद कैसे ले रहे हैं आप?
1: अरे बहुत बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है।
0: जी, ऐसे में कभी आपको काम पे तो निकलना ही पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता है।
0: जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है। जी
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं? चलिए, तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत।
1: जी
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी
1: और
0: हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, क्योंकि आपकी सभी से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ देवास
1: मौसम
0: में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस शाम को एक शादी में जाना है इंदौर, तो
0: जी,
1: बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है, बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में ही लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए।
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा, और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब एकदम हरियाली हरियाली छाती है।
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: आहा, शाम को है भांजी का रिसेप्शन, उसकी तैयारी में डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो
1: जी
0: यही
1: थैंक
0: लग रहा है। ठीक है
1: यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तेजसिंह चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाले बोल रहा हूँ। फोन करेगी सुने? हाँ
0: कैसे हैं आप
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और यहाँ बहुत बारी मस्त बारिश हुई है, बढ़िया
0: जी?
1: खतरनाक।
0: खतरनाक?
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए, ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले। हाँ
0: जी, ये गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: मैडम जी बड़ो मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: जी बिल्कुल, ये गीत आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे अनुमति लें। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफर और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइशें, सच मानिए आज का दिन आप सबने बेहद खास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अदानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमेतरा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मैंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, फेरन यादव, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरूरा से ये पत्र आया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया, निदा फाजली का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना, जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल ने इनकी पसंद है सागर फिल्म का गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने

अभिनेत्री। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र आया है, तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन का।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लिखे हुए संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें,

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक,
5: दिल करे हाय
6: हाय,
5: कोई ये बताए क्या होगा।
7: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
4: और
7: फिर लें आनंद इस मौसम का।
8: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
9: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
0: बहने ना दें इसे बेमोल,
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
0: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
10: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था। वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज जरा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई। थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा वो भैंस कट गई है क्या? नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी

गई है, तो फिर क्या किया जाए? वो कहे साहब रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे इससे भगा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या, कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा नहीं साहब स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने फिर ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि ले वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर था हमारा, चली जा रही ट्रेन, बड़ा मजा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूं कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज लगा

पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे 4 घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है 4 आने का, दूसरा है 8 आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, 2-4 घंटे के लिए कौन पैसे ज्यादा खर्च करे, तू एक काम कर 4 आने वाला दे दे। तो उसने मुझे 4 आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके 2 मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूं तो क्या देखता हूं, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, 2 मिनट 1 मिनट में भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था, मैंने कहा भाई 4 आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो 4 आने वाला पंखा और 8 आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है, ये जो 8 आने वाला पंखा मैं देता हूं ना वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और ये 4 आने वाले की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था साहब, सफर का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहां मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुजुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहां जा रहे हो, तो लड़का बोलता है वो बुजुर्ग से कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूं। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड बहुत अच्छी बात है, भाई जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं। कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहां पर, वहां रहता हूँ। तो बुजुर्ग नौजवान से बोलते कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहां तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहां पे कहाँ रहते हैं साहब। कहले वहां एक कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके पास में रहता हूँ। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी वहां तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहां आप कहाँ रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहां वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहां तुम रहते वहां हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है। तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया किससे, बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्ग भार आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्गों को कुछ

0: वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है, आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिकर नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये,
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब, कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली,
2: सर।
1: क्या बात है?
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश, आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआजी बोलते हैं? नो सर, मैं इनको बुआजी नहीं बोलता। बैठ जाइए। सुरेश, आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआजी बोलते होंगे। बोले माफा, भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोल ही नहीं सकते। बोले भैया, भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? बोले माँ साहब, ऐसा नहीं बोल सकते, काहे की सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है। एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हौलदार कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब, वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत बजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटकलाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
3: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही।
1: साहब भी बड़े गुस्से में आ गए, अटकलाल झपट सिंह जी, और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब, मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे, और बैठे कहाँ, वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
4: क्यों भाई साहब, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
5: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
1: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
4: क्यों भाई साहब, साड़ी है?
1: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब, साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाजार में खुली हुई थी, और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला,
6: देखो तुम अटक बेटा, तुम यही दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा।
1: ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी, कितने की?
3: 7 रुपए 75 पैसे।
6: क्या भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं।

0: सब्जी वाली दुकान चलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपए में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो। तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
1: एक साहब बहुत ज्यादा गप हांकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी जमाने की बात लेकर बैठ गए, 4 लोगों के बीच में अपना शिकार का वाकया सुनाने लगे। बोलो साहब, हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है। अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक, जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक। बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहां टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ, तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो जो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से, बोले हाँ फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
2: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
3: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा। मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा अबे गया। लड़के ने कहा नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
4: बात एक सुनने वालों से बस इतनी कहना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
2: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर, सुनिए।
5: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल उनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
6: अरे काय पटेलन?
5: हाँ बोलो।
6: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
7: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव 13वीं के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम यार हर छठ तीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ रहो जब होते से नौकरी को, और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी गए बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे वो दिन। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तुम मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट देख रहे, ला कर डायरी। डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। ये समझ लो कि तीज के दूज की बात, 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन।
6: हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो।
7: क्या सा मतलब पहले जैसा नहीं होगा?
6: अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते रहे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा।
7: काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को 3rd जन्मदिन वो काय ना हुआ?
6: तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच।
7: हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले।
6: अब जी जो है गुड्डा जो है, इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए हैं, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को।
5: अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे?
7: करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोलो वैसा करेंगे।
6: एक काम

0: हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना। और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पड़े साहब शहर चले और शहर से जैसे ही लौट के आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया, पटेलन पटेलन
1: एक मिनट आ रहा है।
0: अरे काका नहीं जल्दी खोलो यार दरवाजा,
1: एक मिनट आ रही है तुम, मतलब ऐसी जल्दी मचा।
0: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया मतलब खड़े हो तुम, कहाँ जा रहे हो अंदर?
1: अरे भाई मतलब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे, मतलब आ तुम खा लिया चलिए।
0: अरे हाँ यार वो काफो के मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकलाओ, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, ये माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लो करो सामान जो है तय छूट गो।
1: हाँ मैं मान लिया, मैं तुम्हारे भरोसे कच्चू नहीं हो सके।
0: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
1: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है।
0: अब साहब ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा?
1: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई, और ऐसा नहीं है हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
0: अच्छा
1: कहाँ पढ़ गए? नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहा, आजकल रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पांच छक्के आठ, मतलब खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
0: कौन से पढ़ लाई?
1: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
0: तो ठीक है तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
1: केक बना लो।
0: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
1: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप शीट देखी थी।
0: क्या देखी रही?
1: रैप।
0: अरे रैप शीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप शीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं। दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की, यहाँ फालतू बात ना कर तुम बाबू की, यहाँ ये तो दही दो सब अंदर कर लो, बाबू खुद हो गया तुम बिल्कुल एकदम। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
1: जी अजी धरवा देखो टीवी में धरो टीवी।
0: अरे बहुत गजब बहुत बढ़िया यार, एक बात बताओ तुम।
1: हाँ वो पूछो
0: जी, इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक, कितना बढ़िया बना, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
1: नहीं कछु नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने ने वो बन है ना कच्छू, कैसे बनाए तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ, बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम? कहीं फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठैया फैमिलीस ब्रेड दे दो।
0: कौन सी ब्रेड है?
1: फैमिलीस ब्रेड।
0: अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर
1: तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
0: अच्छा मतलब फेंक दी?
1: हाँ मैं फेंक दी अलग कर दी, और फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धारी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड है, फिर चाशनी फिर ब्रेड है, फिर चाशनी जो रे लग गाओ।
0: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो?
1: फिर कच्छू नहीं, गुड़ की चाशनी माहौर डाल के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग दो चार प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छे रंग रोगन कर दो झगा झग के। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई हो बन गए घरों का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदारों को नाम लिख दो, हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 लिख दो, 30 रुपए जरा 3 लिख दो, और अपने सिग्नेचर मार दे बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
0: हाँ पूछो।
1: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे?
0: हाँ तो तुम्हारा कहवे को मतलब का कौन नहीं रहो?
1: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी को अपन जरूर बुला।
0: कौन?
1: एक तो वे पंडित जी।
0: हाँ तो वो तो ठीक है,
1: और दूसरा कौन? वो खवाजा।
0: अरे तुम यार तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
1: क्यों कब ऐसे अकल आए?
0: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवाजन।
1: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भी आने पर फिर दूसरे तुम फंक्शन करवाओ, उन्हें बोला तो कहें काय जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम में मतलब हमें मतलब खोटे काम हम करवाएं हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरों, ऐसा नहीं हो सके भाई।
0: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना पंडित जी को।

0: कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है। और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नजर, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कैसे? देखो भाई ये सो हमने खूब शहर में देखे हैंगे करवाए हैं और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आते कैसे करवाने हैं। एक काम करो बलुआ, हमने सबको दे दो और बलुआ दे के बाद हमने जो जमा दी थी बिल सब कर दो। अच्छा फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बोला गया। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको भी बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप ही, मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त, अपने चले आ रहे हैं, अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। तो वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे मनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब हम जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाव तो जो दूसरे तीसरो है जी। भाई देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो, करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा फुआ को बुलाओ। अरे तुम यार उसमें कहाँ फुआ हुआ, हमारे हिसाब चले हम पूरा डायरेक्शन हमारे यहाँ थोड़ी ना, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बुला, अब फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से, अच्छा एक काम तो करो, का गुड्डा को तीसरे जन्मदिन है, तीन ठैया कैंडल तो धर, तुम समझो कहीं नहीं भाई लफड़ा करवा, क्या होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। जी पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कच्छू नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें, कहा जब तुमने जुगाड़ से केक बना हम कछु नहीं कर सके तुम्हारे लाने, तुमने एक तो कर। अब भाई देखो ए बेटा छुट्टू ते आओ,
1: हाँ आओ तुम एक काम करो तीन ठैया भपका ले आओ।
0: अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के, पटेल जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वो इन्हें लेस दो, अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाएं। हाँ और अब ये तो बताओ कि जैसे ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड, अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसे ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा तुम पहले केक फूकियो, का बेभप कन खो, हाओ पहले एक काम और करो। अब कहा तुम एक काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी करेगा तुम बिल्कुल है, नहीं तो डेढ़ घंटा होगा। भाई पहले फुआ ऐसी आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे हैं, केक की निछावर आ तक देखो जो गांव काम है, केक की निछावर करो जल्दी करो। उन्होंने केक की निछावर हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसा 2 रुपये दे दीजिए, अब दो में काम न चले 10 कोने का लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम न ले, वहाँ केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर राहौर लगाया गुड्डा को बाकायदा माहौर टिपकी की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, अब कहा है गो एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी? भाई देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार है तुमने छोटे होगा हमारे टुकड़ा को दे दो। कहने लगे फिर का चलो दे और 5 कुरे गेहूं दे, हमने 5 कुरे गेहूं दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको, तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहा थूको नहीं, बस खा चल ला हम बुझाए दे रहे, उन्हें लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे। देखो बज गए, आप गुड्डा एक काम करो चक्कू से, चक्कू तो लाओ, ए बेटा ऐसे हाँ तुम्हारा को नाम
1: लपका,
0: अरे लपका तो लपक के जरा चक्कू लिया, बाऊ
1: नहीं मिल रहा,
0: अरे तो बाजू में देख बाऊ कहाँ भी नहीं है, पड़ोस में देख ले जी जी लो तुम्हारे तो चक्कू नहीं, उन कहाँ भी नहीं मिलो, एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिए से केक कट रहा है एक नई बात है, और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासन की सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले जो समझ लो, हाँ और टाफी बर्थडे भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ।

कर बुरो केक कुकी मा बना दो ने तुम चटनी ना कर डालो अलग करो बात हसिया खा अरे राम पूरो केक बाबा में हसिया का करो तुम हसिया नहीं हमें केक लागो का करो केक को हम

0: चाट जी कट जाए हंसिया चाट हो तुम अलग कर नहीं गुड़ तो दे गुड़ की हंसिया बात अलग है जो केक को हंस गया है घर में फंस गया है। खैर साहब अब वो हंसी अलग किया गया। अच्छा एक काम करो केक डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करो डिस्ट्रीब्यूट? अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी मत बोलो अंग्रेज चले गए तुम केक बांटो सबको। एक परात में केक धरा गया और परात में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है।
1: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हंसना मना है इसका भाग चार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक योजना बनाने तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीदी में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बरसात स्पेशल पकौड़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं उनकी जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों के अंधाधुंध कटाई और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का संकल्प लेने का अवसर देता है। सखियों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वृक्ष प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण और विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। यदि हम समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की भी सीख देता है। एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसे नियमित पानी, सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले। इसलिए पौधा लगाने के साथ साथ उसे जीवित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, खेत, पार्क या आसपास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल वृक्षों को प्राथमिकता दें। वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। तो सखियों, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा करे तो करोड़ों नए वृक्ष हमारी धरती को हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं।

सखियों, यह तो हम सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होने के बावजूद पीने योग्य मीठा जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जल उपयोग, भूजल का लगातार दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जल बचाने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और उद्योग सभी जल पर निर्भर है। यदि जल स्रोत सूख गए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना आवश्यक है। सखियों, जल संरक्षण की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। स्नान के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, यानी आप मग और बाल्टी का प्रयोग करें। शावर के उपयोग से बचें। कपड़े धोने के बाद बचे पानी से साफ सफाई कर लें। रसोई का पानी गमलों में डाल दें। वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले वेस्ट पानी को इकट्ठा करके कूलर में डाल लें। कपड़े धोने के लिए उपयोग कर लें। कहीं भी कोई नल लीक कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण की बड़ी भूमिका है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाकर कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जल बचाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत है। छोटी छोटी सावधानियां मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकेंगी। तो जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद बचाएं और जीवन बचाएं।

साथियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन की। यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि अनुभवों, सांस्कृतियों और जीवन को समझने की भी होती है। भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध देश है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, पूर्वोत्तर की हरी भरी घाटियाँ, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देश को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। बहनों, हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटन की दृष्टि से हमारी शिवपुरी काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संपदा के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में हिरण, नीलगाय, स्यार और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मानसून और सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे यहाँ सफेद संगमरमर से निर्मित सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इनके चारों ओर बने सुंदर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सखियों, शिवपुरी में सांख सागर झील है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित यह झील शिवपुरी की पहचान है। यहाँ नौकायन, पक्षी दर्शन और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अपने स्वच्छ और ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध भदैया कुंड बरसों से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रिटिश काल में निर्मित एक ऐतिहासिक भवन, जिसे जॉर्ज कैसल के नाम से जाना

जाता है। यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सखियों, यहाँ पर तात्याटोप पे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्याटोपे की स्मृति में बना यह स्मारक देशभक्ति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का आनंद लेना हो तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए शिवपुरी के इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। बहनों, बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इस मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं, तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, करी पत्ता लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां घर पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती हैं। हालांकि इस मौसम में पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मानसून प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी बगिया को फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है। इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री। हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया, पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। सखियों, पकौड़ों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैगन, पनीर, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटी से अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया का गाया ये लोकगीत।

सायदा कुरैशी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं अशोक कसैरा का गाए ये गजल।

0: अशोक कसेरा की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।

0: कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं
1: और
0: फिर लें आनंद इस मौसम का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा, एस डी बर्मन का संगीत बद्दी किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म था का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है।

यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदी

0: कालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: And greater economic

0: एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
3: दीने दीने वो मारा ढाला पे है।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
5: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
6: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
4: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बाल साथियों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अपने सभी बाल मित्रों का उनके अपने कार्यक्रम बाल सभा में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाई देता है? सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल, हरियाली से ढकी हुई हमारी धरती, बादलों से घिरा आसमान और रिमझिम बरसती बारिश, कितना सुंदर लगता है ना ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, पेड़ और वन। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, गर्मी से बचाते हैं और धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। कई पक्षियों और जानवरों का घर भी यही वन होते हैं। सच तो ये है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देते हैं। और शायद इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ों से दोस्ती करना, प्रकृति से प्रेम करना और ये संकल्प लेना भी है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बचाएंगे। तो बाल मित्रों, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अपनी धरती को और भी हरा भरा बनाएंगे।
2: दीदी, अगर हम पौधे ही रोपते हैं तो हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत लगेगी। मैं वाणी एक ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। कितनी मनमोहक है ये प्रकृति, कितनी प्यारी है हमारी संस्कृति। ये हंसते खिलखिलाते सुंदर फूल लाते हैं, हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान, सिर उठा के जीना सिखाते हैं। ये नीला आसमान, ये दूध सा सफेद चांद और टिमटिमाते तारे करते हैं रोशन इस अनुपम जग को। ये सारे ये गुनगुनाते भंवरे और रंगीन तितलियां खुशियों से भर देते हैं सबका चंचल मन। पेड़ों को मत काटो और रखो हरा भरा हर वन। पेड़ों से मिलती है शुद्ध वायु, जिससे होती है मानव की स्वस्थ आयु। बरखा रुकने पर आया सतरंगी इंद्रधनुष, कर देता है हर कोमल दिल को खुश। यह बहती नदियां सबकी प्यास बुझाती, कल कल कर ये मधुर गीत सुनाती। ये सब है ईश्वर की प्रिय अद्भुत और कीमती देन, जिससे करना है हमें सदा अटूट प्रेम।
0: तेजस्वी भी अपने मित्रों को कुछ सुनाना चाह रही है।
3: दीदी, मैं भी अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त कभी जो भूलेगा नहीं। शुद्ध ऑक्सीजन देगा, शीतल छाया में सुखी नींद लाएगा। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, आज को सवारो कल मजबूत रहेगा। दिन के उजाले पर हमें देखो, रात के शीतल छाया पर हमें महसूस करो, हमें दोस्त मानो। हम दोस्त है तुम्हारे, हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं।
4: दीदी, मैं संजना, मैं अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। वृक्ष हमारे कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। समृद्धि की यह है पहचान, नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। कौन कहाँ है किसे खबर है, अंधकार से सबको डर है। प्रदूषण से मुक्त रहे सब, पर्यावरण से युक्त रहे सब। एक लक्ष्य हो यही हमारा, सदा रहे सब इसका ध्यान। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, संग साथी रहते नहीं लड़ते, जीवन अपना सफल बनाते, पर वृक्ष लगाना भूल क्यों जाते। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरित क्रांति को खुशियां पाएं। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान।
0: आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं और साथियों, गीत संगीत सुनने में भी आपको मजा आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल मित्रों, आजकल बरसात का सुहाना मौसम है। बारिश की फुहारें, कागज की नाव और गर्मा गर्म पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं ना।
1: हाँ दीदी,
0: लेकिन इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, पेट की गड़बड़ी, डेंगू और मलेरिया। साथियों, यदि इस मौसम में हम थोड़ी सावधानी रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बाल मित्रों, बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने, हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिएं। बाहर का कटा या खुला हुआ भोजन खाने से बचें। खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। घर और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि मित्रों, इसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का कारण बनते हैं फिर वो। साथियों, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जी, फल और पौष्टिक भोजन खाएं, और यदि आपको उल्टी, बुखार, खांसी जैसे कुछ लगता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं और डॉक्टर से परामर्श लें। बाल मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसीलिए जितना आवश्यक पढ़ाई करना और खेलना है, उतना ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब हमारा कौन सा मित्र हमें क्या सुनाने वाला है?
2: दीदी, मेरा नाम मानसी है। बरसात का सुहाना मौसम है, इसीलिए मैं अपने मित्रों को ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। देखो आए बादल छाए, इंद्रधनुष वर्षा संग लाए, गूंज रही कोयल की वाणी, कह रही धरती बरसो अब पानी। तुम्हें देखकर खिल उठी कलियां, चहकने लगी सूनी गलियां, मस्त मयूरों ने पंख फैलाए। देखो आए बादल छाए, झरने झर झर नदियां कल कल, सबके मन को हर ले पल पल, इंद्रधनुष ने दिए दर्शन, निर्जीवन में दिखे जीवन के लक्षण। कब से इस वर्षा को तरसे, अब तो ये घने बादल बरसे, प्रकृति का ये रूप सुहाना, सबके मन को भाए, देखो आए बादल छाए।
3: मेरा नाम कांजी है और मैं अपने मित्र को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह जब आंखें खुली, रिमझिम रिमझिम थी बरसात, उठकर बाहर जब देखा मैंने, दिखी मुझे हरी गीली घास। माँ ने जब आवाज लगाई तो मैं थोड़ा सा अलसाई, ठंडी हवा से मैं थराई, काश आज हो जाती छुट्टी तो घर में हो जाती मस्ती।
4: दीदी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अपने मित्रों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब हम अपने पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे तब भी कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें क्लोथ बैग इस्तेमाल करने चाहिए। हम जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज की 30% तक कोल्ड एयर बाहर निकल जाती है और कमरे की वार्म एयर फ्रिज में चली जाती है, उससे वापस ठंडा होने में बिजली बर्बाद होती है। मित्रों, हमें अपने नोटबुक के दोनों तरफ लिखना चाहिए, प्रिंटर पेपर को भी दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमें ब्रश करते समय या फिर साबुन से हाथ धोते समय पूरे वक्त नल खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को अपने कमरे और साथ ही पूरे घर में भी एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स लगाने को कहें, साथ ही जब जरूरत ना हो तो उन्हें ऑफ रखना चाहिए। इससे आपके घर का लाइट का बिल भी कम आएगा। टोस्टर, टीवी जैसे उपकरणों को जब यूज नहीं कर रहे हो तब उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए।
0: नन्हे साथियों, एक और गीत सुन लिया जाए?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: नन्हे साथियों, कहानियाँ सुनना तो आप सभी को पसंद आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वो सोचने लगा कि ये सिक्का मेरा तो है नहीं, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ, पता नहीं किसका ये सिक्का गिर गया होगा। ना तो मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे फेंक भी तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सोने का है। यही सोचता हुआ वो यात्री जब आगे बढ़ा चला जा रहा था, तो रास्ते में माला जपते हुए उसे एक साधु महाराज मिले। तब उसने सोचा, क्यों ना इस सिक्के को साधु को दे दिया जाए। यात्री ने जब वो सिक्का साधु को दिया, तो मित्रों पता है क्या हुआ? सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, भाई ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो तुम किसी गरीब को दे दो, ताकि ये उसके किसी काम आ सके। साधु की ये बात मानकर यात्री आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा अपनी सेना को लेकर जा रहा है। तभी उसने एक सैनिक से पूछा, भाई ये राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है? तब किसी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा राजा है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहा है। सैनिक की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो युवक सोच में पड़ गया। फिर वो जो युवक यानी कि यात्री था, राजा के रथ के करीब पहुंचा और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाकर कहा, महाराज इस सिक्के को आप रख लीजिए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने लोगों को बहुत कुछ बांटता हूँ और ये मुझे सोने का सिक्का दे रहा है। तब राजा ने पूछा, ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मित्रों उस यात्री ने कहा, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तब राजा बोला गुस्से से, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ? तब वो यात्री बड़े शांत भाव से बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर तो नहीं जाते। यात्री की बात राजा को समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तभी राजा ने यात्री को धन्यवाद दिया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। मित्रों कैसी लगी ये कहानी?
1: बहुत अच्छी।
0: और इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली?
2: दीदी हमने इस कहानी से यह शिक्षा ली कि गरीबी या अमीरी पैसों से नहीं होती, अपनी सोच से होती है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
3: दीदी मेरा नाम स्नेहल है। बरसात का मौसम है, मैं अपने मित्रों से बरसात से जुड़ी हुई कुछ पहेलियाँ बूझना चाहती हूँ।
0: तो साथियों आप तैयार हैं पहेलियाँ बूझने के लिए?
1: हाँ दीदी।
3: सारी धरती हरी बना दे, कर दे पानी पानी, ऋतु कौन सी बादल संग में, बोलो ऋतु सुहानी, बताओ बताओ।
0: कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊँ? वर्षा ऋतु।
3: सही जवाब, कांची ने सही

0: अगर चलते रहना है काम, बड़े बड़े जीवों को इसकी गोद में मिला आराम। बताओ कौन बताएगा?
1: मैं बताऊंगी।
0: नदी। हाँ दीदी, स्नेहल सही उत्तर बताया।
2: दीदी मैं भी अपने मित्रों से पहेलियां पूछना चाहती हूँ। चढ़े घटा घनघोर भला तब कड़के चमक डराए, आंधी व बरसात साथ बोले कड़क कपाए। बोलो बोलो बताओ उत्तर।
0: दीदी मैं बताओ, बिजली।
2: हाँ दीदी, कांची ने सही जवाब दिया। दीदी मैं अपने मित्रों से एक और पहेली पूछना चाहती हूँ। सबको जीवन देता जल, जल के दाता कौन, वृष्टि उनसे कहो धुआं से गरजे रहे ना मौन।
3: कांची।
0: दीदी पानी।
2: नहीं दीदी,
3: स्नेहल।
0: बादल।
2: हाँ दीदी, स्नेहल ने सही जवाब दिया।
4: एक पहेली मैं पूछती हूँ। रंग रंगीला मन को भाता, धनुष बड़ा आकार, अचरज नभ में धनुष दिखाता, बोलो क्या विचार?
3: कौन बताएगा?
2: दीदी मैं बताऊँ? दीदी इंद्रधनुष।
4: हाँ दीदी, सही जवाब दिया शुभी दीदी ने।
2: अपने मित्रों को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, बच्चे को पानी पिलाने से पहले अच्छी तरह उबाल लें। बच्चे के पापा डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है सर, पर उबालने से बच्चा मरेगा तो नहीं।
0: दीदी मैं भी अपने मित्र को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में एक लड़का छतरी लेकर बाहर गया। उसकी छतरी में एक बड़ा छेद था, पर एक दोस्त ने उससे पूछा, तेरी छतरी में छेद क्यों है? फिर उसका दोस्त बोला, अरे वो छेद तो मैंने ही किया है ताकि बारिश बंद होने पर मुझे पता चल जाए।
2: दीदी मैं अपने मित्रों को एक और चुटकुला सुनाना चाहूंगी। एक बार रिंकू जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर वह रुक गया और बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो हेल्थ ड्रिंक भी पिलाएं।
0: दीदी मैं एक और चुटकुला अपने मित्र को सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की होटल में खाना खाने गई, खाने के बाद बिल का भुगतान किया, फिर अचानक वेटर के पास गई और बोली, ककड़ी के दो टुकड़े रोज आंखों पर रखा करो और रात को पानी में मेथी भिगो कर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, मैडम आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? लड़की, मुझसे किसी ने कहा था कि बिल चुकाने के बाद वेटर को टिप जरूर देना।
3: बाल मित्रों, आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, चुटकुले सुनाए, कहानी सुनाई, बहुत अच्छी पहेलियां बूझी। और साथियों, आप भी अपनी कविताएं, कहानियां, रचनाएं अपने मित्रों को सुनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र आकर अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। आप पत्रों द्वारा भी अपनी रचनाएं हम तक भेज सकते हैं। साथ ही आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये भी पत्रों में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम बाल सभा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद।
5: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्रीय संचार

एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:05 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

0: 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के तनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ हैं। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाए तो पर्यावरण

में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। इसलिए कहा गया है शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए

0: ये हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है, वरना मुश्किल हर पल है। बचा लो पानी, अब भी मौका है, वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने तक जल की जरूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है, यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकें। ज्यादातर लोग, तकरीबन 70-75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा। वर्षा के जल को बचाकर उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को जरूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल की स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं। इसलिए जरूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़े से गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियां बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाएं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे जरूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की जरूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की जरूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये है कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें, विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
0: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अच्छे संस्कार अनुशासन नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं लेकिन गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं वे जीवन में सफलता ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी।

0: अभी युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।

अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत बनाया था जतिन ललित ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तर।

0: कभी न किया तो फिर कभी नहीं ला ला ला।
1: श्रोताओ, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। सुनते हैं कार्यक्रम का गीत अगला, जिसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

ये जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था जतिन ललित का। अब आपको सुनवा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में सॉन्ग, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद्ध किया है प्रीतम ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडियम वेव, DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए हमारा अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म गुरु से।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 5। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममताज सिंह, संपादन सहायक झवना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। विशेष जयमाला में आज आप सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे असिस्टेंट कमांडर रामकश वाधवा की शौर्य गाथा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका बहादुर की शादी, लेखन हरि मेहरा, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर, कल प्रसारित होगा भाग 241। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झवना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30, कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता परिचित सहानी पर, संवादक राजेंद्र त्रिपाठी, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुति तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे, यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने, शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन, जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है आपकी कसम। हवा महल का समय रहेगा वही रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट, लेखक मदन बिहारी शरणदीप, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर, रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता परिचित सहानी पर। छह गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर चयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।
यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी।
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल।
2: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
1: क्या बात है।
2: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी। ये कई लोगों को मालूम नहीं है।
1: जी।
2: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था।
1: जी।
2: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे।
1: जी जी।
2: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की।
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
2: बॉम्बे से।
1: मुंबई से।
2: हाँ
1: जी।
2: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला। मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
1: क्या बात है। वाह।
2: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ, सुनो बड़ा अच्छा मजा आता है जरा मेरे पास। हाँ हाँ। वो तो सूरदास थे।
1: जी जी।
2: तो हाँ बड़ा अच्छा मजा आता है। हाँ, कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
1: जी जी।
2: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए। 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम।
1: जी जी।
2: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाएं तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर हैं। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
1: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंत्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है। और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ, तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: वो कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
1: किशोर दादा।
2: किशोर दादा गा रहे थे।
1: क्या बात है।

0: पे ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने
1: जी, जी.
0: वो बस जहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स
1: जी जी
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर
1: जी जी
0: और मैं था इतना पतला दुबला

0: कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है
1: जी जी जी,
0: इतना पतला। आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले आग तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
1: अरे
0: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तोर की चोरी रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो,
1: जी जी,
0: मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गए, पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100-piece ऑर्केस्ट्रा और 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था।
1: जी जी।
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे देख किसको लाया हूँ। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तब हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूँ मैं पंचम दा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिश? आमी बोलला हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है? बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया, गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है।

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है
1: ये है।
0: जी
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं।
0: जी
1: फिर उनके सिटिंग रूम मैरीलैंड उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो।
0: जी जी
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है
0: जी।

0: Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang.
1: Chiave. क्या बात है.
0: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी ही नहीं, और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पीस है ये पंचम को सा करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेरे सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा।
1: जी.
0: मेरे अंदर ना डर नहीं था, अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था। जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया।
1: क्या बात है.
0: पंचम दा मेरे पास आए, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले
1: ओ
0: जाके खरीदो। तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ, उन बड़े
1: जी
0: लोगों को,
1: बिल्कुल.
0: रामचंद्र धोत्रे साहब थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा, एक एक बांसुरी।

0: और मेरा जारी रहा
1: जी जी
0: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं। रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है
1: जी।
0: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं
1: जी।
0: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ,
1: गान सरस्वती,
0: हाँ गुरु माँ, माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो। प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस,
1: बिल्कुल।
0: रियाज एक अकेले में करने की चीज है, जब तक आप डूबेंगे नहीं। एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।
1: क्या बात है।
0: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए
1: जी।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र,
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। भारतीय शूरवीरों के इतिहास के पन्नों को पलटें तो मोतियों से जगमगाती हमारे शूरवीरों की विजय गाथा के मोती झिलमिलाते हैं। ये आर्यावर्त के वो शूरवीर हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही बार जंगी हवाओं के रुख को मोड़ दिया। दुश्वारियों की आंधियां इन्हें डरा न सकी, दुर्गम रास्ते हौसलों को कम न कर सके, न जाने कितनी बार जाने कुर्बान भी की, फतेह का परचम लहराया। फौजी साथियों, आज हम शौर्य गाथा की इस कड़ी में सलाम करते हैं मां भारती के फरमाबरदार बेटे और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के धाकड़ सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम।

नमस्कार शिवपुरी, आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वीवीजी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
1: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए दो पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को PM ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहन खो धर्मों की राम राम। और भैयाओ कैसे हैं आप सभी? भैयाओ आम ये सोचते हैं कि आप सभी लोग इस समय चौपाल पे बैठ के हमारे कार्यक्रम को इंतजार कर रहे थे, तो अब भव इंतजार खत्म और अपन चौपाल कार्यक्रम की हम कर रहे हैं शुरुआत आपके सभी किसान भैयन के संग। तो भैयाओ देखो, हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जा समय देखो अपने मौसम में जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं अधिक हो रही है, कहीं कम हो रही है, ये तो हमेशा से होत आ रही है ना। और हमारे भैयन को सिर्फ आंखें कहाँ लगी हैं? आसमान पे ऊपर देखत हैं, बादल घुमड़ घुमड़ के काले हो रहे हैं, लेकिन पानी जो बरसना चाहिए उतेक नहीं बरस पा रहा है ना। लेकिन अब हाल फिलहाल इतेक तो हो गया है कि हमारे भैया बोनी शुरुआत कर दई है, कछु कछु जगह पे अब कम हो पावे तो भैया आओ वो भी पानी बरस जाओ, क्योंकि भैया देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसलिए भैया इंतजार हम आओ कर वो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पानी बरसेगो और हम अच्छे से बोनी कर सकेंगे। लेकिन हम बिल्कुल तैयारी करके रखें, खाद भी बीज भी, और भैया बीजों को चयन हम अच्छी तरीके से करके रखें, जैसे कि हम बीजों को छांट बीन के साफ सुथरों कर लें, कटे फटे बीजन को हटा दें, है ना। और हम बीजों उपचार की दवा जरूर रखें अपने पास। जब भी हम भैया जब बोनी शुरू करें तो भैया जितेक बीजन की हमें बोनी करनी है उतने कई हम बीजों उपचार करें और हम बोनी करें। बोनी करवे के लाने हमें क्या करने भैया? हमें डबल पेटी वाली सीड ड्रिल को उपयोग करने हैं, यानी कि जो दो पेटी वाली सीड ड्रिल आते हैं तो भैया आओ हम बा में एक में खाद और एक में बीज, जिससे कि खाद और बीज एक साथ हमारी बोनी करवे में सुविधा होत है और कतार से कतार में बोनी हो जाऊत है। और भैया हमारी जो दूरी होता है वो भी बिल्कुल एकदम नाप के अनुसार कतार से कतार और नाप से बोनी होत चली जाऊत है, जिससे कि हमें का लाभ मिला था भैया कि जैसे कि खरपतवार जो उगत है वो भैया हमें निदाई गुड़ाई करवे में और फसल को एकदम हवा लगनो चाहिए, जितनी दूरी होनी चाहिए उस हवा लगने से फसल की बढ़वार भी बहुत अधिक होता है। तो ऐसे हमें ना सीड ड्रिल की उपयोग ऐसे समय में बड़ो महत्व लगत है ना। तो भैया हम अपई खेती बाड़ी पे तो ध्यान दे ही रहे हैं और खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, और भैया बीजों उपचार से करवे से फायदा का है कि जब भी हमारे बीजों में कोई अगर रोग रहित या कोई भी किसी भी तरीके से अगर उसमें कोई कीड़ा या कोई भी कुछ होता है तो भैया वो फसल में नहीं उत्पादन में नहीं आते, क्योंकि जब हम बीज को बीजों उपचारित कर लेते हैं तो वो बीज सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए हम अपने बीजों को बीजों उपचार करें। और लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखें कि जितेक हम बोनी कर रहे हैं एक दिना में तो उतने कई बीजों को बीजों उपचार करें और बोनी कर दें, दूसरे दिना फिर बीजों उपचार करें और उतने फिर बोनी कर दें। ये हमको प्रक्रिया को अपनाने हैं, ये नहीं कि एक ही दिना में बीजों उपचार कर रख लाए और दो चार दिना तक बोनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने है ना। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि बीजों उपचार को महत्व का है ना। और भैया उत्पादन भी अच्छा होता है और अंकुरण भी अच्छा फूटत है, जिससे कि हमें जो मिलना चाहिए फसल से लाभ वो पूरों को पूरा लाभ मिलत है। भैया आओ देखो, हम इस समय देखो चल रहा है मौसम काय को बरसात को, है ना। तो भैया अभी हम बाद में बात कर

0: हैं, लेकिन जा से पहले हम सुन लें जो संदेश।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: तो भैया देखो, अपन ने संदेश तो सुन लो है ना। आज भैया अपन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो भैया जा योजना को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। जा के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त में गेहूं और चावल को प्रदान करे जाते हैं। भैया जाको उद्देश्य का है? भैया जाको उद्देश्य सिर्फ इतने एक है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है ना, उनको भैया खाद्य सुरक्षा प्रदान करवो और उनकी मानसिक राशन की चिंता को दूर करवो है। और भैया अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी में जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको भैया केंद्र सरकार ने जा योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक यानी कि दिसंबर 2028 तक के लाने बड़ा दौगव है। तो भैया है ना खुशी की बात, 2028 तक हमें अन्न योजना को लाभ मिला करेगा। और यह भैया विश्व को सबसे बड़ो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जाको लाभ देश की लगभग 56% जनसंख्या ले रही है, यानी कि मिल रहा है भैया। और भैया हम ये कहेंगे कि यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड है और आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आउट हैं, तो भैया आप भी जा योजना के हकदार हैं। अब आप समझ गए होंगे भैया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हमें लाभ मिलवो चाहिए। तो अपन अन्य योजना में भैया अपन को लाभ मिल रहा है और जे भैया योजना हमारे सभी गरीबों को मिल रही है। अब भैया हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में हमें पेड़ लगावो यानी कि जीवन बचावो, ये हमारे लाने सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ केवल नारा ही नहीं है भैया, बल्कि ये मानव की अस्तित्व की रक्षा को मूल मंत्र भी है। पेड़ हमें जीवन दायिनी और ऑक्सीजन तो देवते ही हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोकत हैं, तापमान कम करत हैं और मिट्टी के कटाव को रोककर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अब आप समझ रहे होंगे भैया कि हमारे लाने पेड़ कितने कीमती हैं। अगर ये पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, हमारे जीवन की जो सांस चल रही है वो इन पेड़ पौधों के द्वारा ही चल रही है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो इन पौधन के द्वारा ही ऑक्सीजन मिल रही है, और जो सांस छोड़ रहे हैं वो सांस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो छोड़ रहे हैं हम, वो पेड़ पौधा और वर्ज कर रहे हैं। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि जे हमारे लाने पेड़ पौधा कितने कीमती हैं। तो भैया शुद्ध हवा और जलवायु नियंत्रण, पेड़ वायुमंडल से हानिकारक गैसों को छानकर शुद्ध हवा देते हैं, यानी कि भैया हमारे वातावरण में जो दूषित हवा, जो कि जो धुआं निकलते हैं भैया, प्रदूषण फैलाते हैं, काफ़ी जो फैलाव होते हैं हवा में, नुकसानदायक जो होते हैं, वो सब जो पेड़ हमें सोख लेते हैं वो, और भैया हमें उसके द्वारा हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी जे कम करत है। तो भैया आप समझ गए कि जंगल और पेड़ लाखों जीव जंतुओं और पंछियों कीड़े मकोड़ों का प्राकृतिक घर भी है। भैया पेड़ पौधे के द्वारा सभी जीव जंतु पंछियों कीड़े मकोड़ों का बिल्कुल सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो पेड़ पौधों के बीच के समय भैया हमें अगर बैठत हैं और पेड़ पौधों को हम देखत हैं तो भैया इनको देख के भी हमारा मानसिक जो तनाव होता है ना वो भी कम हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को ये बेहतर बनाते हैं क्योंकि भैया शुद्ध वायु मिलते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते ना भैया तो और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब का कहते होते हैं कि भैया सुबह को उठवो और शुद्ध ताजा हवा लेवो, ये हमारे स्वास्थ्य के लाने सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि भैया जब हम सुबह सुबह हम टहलत हैं या घूमत हैं तब हमारे लाने जो सुबह सुबह ताजा हवा शुद्ध हवा एकदम मिलत है भैया, वो हवा हमारे शरीर के अंदर जाउत है तो वो हवा हमारे लाने एकदम प्राण वायु को काम करत है। इसलिए आप देखा तो ना कि जितेक भी बुजुर्ग होते हैं भैया तो वो सुबह सुबह जरूर टहलत भाई मिलेंगे, क्योंकि भैया उनको सुबह सुबह टहलवे से एक तो देखो शारीरिक व्यायाम भी हो जाउत है उनको शरीर की पूरी रचना चलवे से, और भैया दूसरी बात पूरी शुद्ध वायु उनके शरीर में चली जाउत है इससे कि उनको स्वास्थ्य अच्छो रहते। तो भैया अपने घर के आसपास जो खाली जगह पड़ी है या पार्कों में या अपने स्थानीय जहाँ ट्यूबवेल लगे हैं हेडपम्प लगे हैं कुआ लगे हैं या स्टाम्प डैम है या तालाब है छोटे छोटे या अपई खेतन की मेड़ों के आसपास ये पौधे अपन इस समय रोपण कर सकते हैं। क्योंकि भैया बरसात के मौसम में पेड़ पौधा लगावो ये बहुत ही आसानी से हमारे लाने बहुत आराम से लग जाऊते हैं, जाको सबसे बड़ो कारण है क्योंकि पूरी मिट्टी भैया नमी यानी पानी से गीली रहते हैं और उनको हम लगा देते हैं तो उनकी जड़ें बहुत जल्दी मिट्टी में भैया जम जाउत हैं और फैलवो लगत हैं। और दूसरी बात प्राकृतिक वातावरण ऐसो रहता है कि पेड़ पौधा बहुत जल्दी हरे भरे हो जाउत हैं, क्योंकि अपन देखा था ना कि जब गर्मियाँ होते हैं तो भैया चारों तरफ सूखो पड़ो रहते और जैसे पानी बरस वो शुरू भाओ तो चारों तरफ हरियाली हो जाते ना निरे सारे पेड़ पौधा घास फूस न जाने का उग आउते हैं। तो बरसात के मौसम में बरसात के पानी से भैया ये सब अपने आप ही उग आउते हैं। इसलिए हम जो पौधरोपण करेंगे इस समय तो वो बहुत जल्दी भैया अपने जड़ें स्थापित कर लेते हैं और बड़ो हो जाउते हैं। बस हमें कितने काम करने हैं कि भैया बाय हमें अपने पशुओं से बचा के रखने हैं, बाकी ओट करते चारों तरफ से, और भैया जब जब पानी की भैया व्यवस्था हो तब हम उसे पानी की जब जरूरत पड़े पौधा को तो हम उसे सूखने से पहले पानी डालते रहें। तभी हमने आसपास बताया कि जहाँ भी पानी की व्यवस्था है वहाँ आसपास लगाएंगे तो हमें पानी डालने में भी परेशानी नहीं आवेगी। घर के आसपास लगा दें घर के बाहर लगा दें है ना, क्योंकि भैया देखो घर के बाहर पेड़ पौधा लगे होंगे तो बहुत ही सुहावनो लगत है अच्छो लगत है। तो भैया जब अपाओ गांव के आसपास क्षेत्र में स्कूल में पाठशाला के आगे मंदिरों के आगे अपन चौपाल के जहाँ बैठा थे अपन चबूतरे पे जहाँ पेड़ पौधा लगे होते हैं अपन चबूतरा बना लेते हैं वहाँ छाँव में बैठे रहते हैं तो भैया देखो कितने आनंद आउत है। और भैया जब राहगीर जब निकलेंगे सड़कों के किनारे लगा देंगे तो भैया उन्हें भी जब अपन कहीं जाते हैं तो भैया गर्मियों में धूप से बचवे के लाने का देखा थे पेड़ की छांव, तो भैया ऐसे ही राहगीरों के लाने भी भैया राहत मिलेगी धूप से बचवे के लाने। अगर बाह में भैया फल आ रहे हैं फूल आ रहे हैं तो भैया वो भी काम आएंगे समय पर अपाए लाने। तो भैया अपाए लाने पर्यावरण की दृष्टि से फल फूल की दृष्टि से सब कछु अपाए लाने और वायु और अपन को शुद्ध हवा तो मिल ही रही है ना, अपनी ऑक्सीजन जो अपन ले रहे हैं वो मिल ही रही है। तो भैया ये सब चीज़ें अब जब अपाओ गांव हरो भरो होगो चारों तरफ हरियाली होगी तो जब कोई भी नव व्यक्ति आए हो तो का कहो कि वाह क्या हरियाली है, कितने एक सुहावनो

0: मौसम है यार, कितने एक अच्छो लग रहा है। जब अपन किसी पार्क में जाते हैं, जब अपन किसी भी बगीचे में जाते हैं, तो कितने एक अच्छो लगत है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधा देखते हैं ना, तो कितने एक सुंदर लगत है। तो भैया अपन भी आज से पेड़ पौधा लगाएं, और पेड़ पौधा लगा भी के लाने, अपन पर्यावरण को बचाएं, है ना। और भैया अपन पेड़ पौधा के लाने, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपन पर्यावरण को हरो भरो रखें और उसकी देखभाल तब तक करें जब तक कि वो बड़ो ना हो जाए। तो भैया हमारा यही मतलब है कि मोड़ा मोड़िया जो आवे वाली पीढ़ी है हमारी, उन्हें भी लगे कि हमारे पूर्वज हमारे लाने देखो पेड़ पौधा लगा के गए थे, आज हमें जो फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, पत्ती मिल रही है, लकड़ी मिल रही है, इनसे हमें प्राण वायु मिल रही है, ये सब चीजें हमारे पूर्वज दे गए थे, जो कि आज हम जो उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारे पूर्वज दे गए थे। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने आवे वाली पीढ़ी को हम भी अपन ऐसो काम करके जाएं। और भैया अपन किसी उपलक्ष में भी लगा सकते हैं, किसी को जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है ना, तो उनकी याद में भी, अपने पूर्वजों की याद में, अपने इन सब की याद में भी हम पेड़ पौधा लगा के उनको बड़ो कर सकते हैं भैया हैं। तो भैया हम आज से कसम खाएं और अपने गांव को चारों तरफ हरो भरो बनावे के लाने, हम सभी भैया एकजुट होकर सभी प्रयास करें, क्योंकि एक के प्रयास से कुछ नहीं होता भैया। सभी जब प्रयास कर रहे थे तो वो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी की कल्पना नहीं कर सकते हम। जो महीना भर में काम होने हो, तो जब अगर एक आदमी काम करा तो एक महीना हो, तो अगर 20 आदमी भी इकट्ठे होके काम करेंगे तो कितने जल्दी काम होगो, और चारों तरफ पेड़ पौधा होंगे, तो भैया हमने ये कल्पना भी नहीं करेंगे करी होगी। तो भैया अब हम चर्चा को रोकत भय आपको लाए हैं एक भेंट वार्ता, जाको विषय है मनोरोग कारण लक्षण एवं बचाव, जाकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं पाई भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल जी। हम पुनः प्रसारण कर रहे हैं भैया, तो सुनत हैं जामे भैया, और ये जानकारी में का कह रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: श्रोताओ नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको तरह तरह की भेंटवार्ताएं सुनवाते हैं, और कई बार हेल्थ की भी होती है। आज हेल्थ का जो हमने विषय लिया है वो है मनोरोगों से कैसे बचें, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी हैं, जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं, साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में RMO के पद की जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सभी सुनने वालों के मध्य में हम आपको स्वागत करते हैं और नमस्कार भी हम आपको प्रेषित करते हैं।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, जो विषय है एक सामान्य रोगों से हटकर विषय है, बुखार होता है, खांसी होती है, जोड़ों का दर्द होता है, किसी भी तरह का होता है, तो मनोरोगों से कैसे बचे। तो पहला प्रश्न तो आता है कि मनोरोग है क्या, आप इसको थोड़ा सा समझाएं कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कोई मरीज वो इस बीमारी की ओर जा रहा है, इसके सिम्टम्स क्या है और पहचाने कैसे।
2: देखिए सामान्यतः जो मनोरोगियों के लक्षण होते हैं वो उनको हम 3 डोमेन में बांटते हैं। एक तो लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड होते हैं, एक लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के विचारों से रिलेटेड होते हैं, संबंध रखते हैं, और एक प्रकार के लक्षण होते हैं जो परसेप्शन से हम कैसा महसूस कर रहे हैं सामने वाली चीज़ों को। तो पहले इमोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में कलर्स भी करते हैं, लेकिन अगर इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाएँ कि हम अपना जो सामान्य कार्य कर पा रहे हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं, अगर इमोशंस इतना ज़्यादा हो जाए कि जो हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी सामाजिक लाइफ है, या हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ है जहाँ हम काम करते हैं, उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो कोई इमोशन है जैसे सैडनेस का इमोशन है, तो सैडनेस कैसी हो, परसिस्टेंट हो और परवेजिव हो, मतलब कि एक लंबे समय तक बनी हुई हो, और सभी फील्ड में हो, वो आपके कार करने की फील्ड में हो, हर जगह मौजूद हो वो सैडनेस, आपके घर पे भी मौजूद हो वो, आपको पहले जिन चीज़ों को कार्य करने में मज़ा आता था अब उन चीज़ों को कार्य करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपके शरीर में हमेशा थकान महसूस रहती रही है, आपका कहीं ध्यान नहीं लगता है, आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जैसे मर जाओ इस ज़िंदगी से, तो या सुसाइडल थाट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थाट्स आने लगते हैं। तो ये लक्षण है, अगर लंबे टाइम तक ये बने हुए हैं, इसको नॉर्मल तनाव से अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल जो सामान्य ना तनाव होगा, उसका कोई कारण होगा, और वो कारण हटते ही वो तनाव चला जाएगा और वो कुछ समय के लिए होगा। लेकिन व्यक्ति अगर डिप्रेशन वाले मनोरोग में चला गया तो ये हमेशा के लिए बना रहेगा, वो कारण से मतलब नहीं है, वो कारण चला भी जाएगा तब भी वो लक्षण उसको बने रहेंगे उसके हिसाब से, और वो उस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ पाता है। तो ये हो गए अपने इमोशंस वाले। फिर होते हैं एक अपना के थॉट वाले लक्षण होते हैं, जो विचारों वाले लक्षण होते हैं, विचार होते हैं। जैसे एक बीमारी होती है, एक मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया होता है, जिसको आम भाषा में पागलपन भी कहते हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं है, उसमें बस उसको शक शंका की बीमारी हो जाएगी। विचार है, नहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बातें कर रहा है, ये कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, कुछ प्रसारित हो रहा है तो ये मेरे लिए हो रहा है, अखबार में खबर छप रही है तो ये मेरे लिए छप रही है, टीवी पे ये हो रहा है तो मेरे लिए हो रहा है, या ये दो लोग बातें कर रहे हैं तो मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, हमेशा शक शंका की बीमारी। और ये आपस में पति पत्नी के बीच में भी हो सकती है, पति को पत्नी पे शक हो सकता है, पत्नी को उसके पति पे शक हो सकता है, तो व्यक्ति एक शकीली पर्सनैलिटी के रूप में हो सकता है। ठीक है, एक होती है परसेप्शन, अब वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है, तो उसको व्यक्ति को कानों में कुछ आवाज आ सकती है, उसको कुछ ऐसा दिखता है जो कुछ है ही नहीं, जैसे वो सांप को रस्सी समझने लगेगा, या कुछ सांप होगा नहीं फिर भी कहेगा सांप दिख रहा है मुझे कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो दूसरे सामान्य व्यक्ति को नहीं दिख रही होती है। तो इस प्रकार के कुछ ही लक्षण होते हैं, ये लंबे समय तक अगर व्यक्ति पर बने रहें तो हम कहेंगे कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मनोरोग की तरफ जा रहा है, तो उसे एक मनोरोग चिकित्सक के परामर्श की निश्चित ही आवश्यकता है। साथ साथ इनके और भी लक्षण होते हैं, जैसे व्यक्ति की भूख में भी बदलाव आएगा, व्यक्ति का ध्यान कम हो जाएगा, व्यक्ति की शरीर में हमेशा थकान बनी रहेगी, व्यक्ति का मन उन कामों में कभी नहीं करेगा जिन कामों को उसको पहले अच्छा मन लगता था, उसका अब वो कोई कारण नहीं ढूंढ पाएगा, और वो दुनिया भर की जांच कराएगा क्या हो रहा है मुझे। एक एंग्जाइटी नाम की बीमारी होती है, ये तो मैंने डिप्रेशन के लक्षण बताए थोड़े, एक एंग्जाइटी होती है जिसको घबराहट बोलते हैं। अब घबराहट की बीमारी इतनी खतरनाक होती है वैसे, और बहुत ही कॉमन है, व्यक्ति को समझ नहीं पाता, जैसे किसी के सीने में दर्द हुआ तो वो सोचेगा कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, उसका एकदम से धड़कन तेज हो जाएगी और उसके एक पसीना आने लगेगा, तो बार बार वो फ्रिक्वेंट उसकी विजिट होगी डॉक्टरों के पास में, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, दिल के डॉक्टर के पास में, बार बार उसको आईसीयू में एडमिशन लेना पड़ेगा, जब भी वो आईसीयू में जाएगा उसके भाई पैसे भी खर्च होंगे 5-10, लेकिन जैसे ही जाएगा एक दो दिन में वो ठीक होकर वापस आ जाता है, हर 2-3 महीने में उसके साथ ऐसा होने लगता है बार बार। तो ये बीमारी एंजाइटी की होती है, तो इसमें व्यक्ति बहुत परेशान हो जा सकता है, फिर वो एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर सोचता है इस जीवन से अच्छा था मैं मर जाऊं, उसको अपनी बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, वो बार बार जांच कराता है, अपनी ईसीजी कराता है, इको कराता है, टीएमटी कराता है, एंजियोग्राफी करा लेता है, वो करा के 6 महीने तक रिलैक्स हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद फिर दोबारा कुछ ऐसी घटना होती है तो फिर से वो साइकिल चलती चली जाती है, चलती चली जाती चलती, और व्यक्ति ग्रसित होते चला जाता
1: है। यानी कि यही लक्षण है जो आपने सारी चीजें बताई हैं, आपने जो अलग अलग खुलासे किए हैं, यही उसके लक्षण है। अगर ये सिम्टम्स कोई महसूस करता है या किसी व्यक्ति के बारे में उसके परिवारजन महसूस करते हैं तो फिर वो शायद मनोरोग की तरफ
2: बढ़ रहा है।
1: अब दूसरा प्रश्न आता है, मनोरोग है तो क्या आज के समय में जब हमारे विज्ञान ने तरक्की कर ली है क्या इलाज संभव है? दो चीजों से, क्या मेडिसिन फॉर्म से या काउंसिलिंग के माध्यम से, किस माध्यम से इसका इलाज संभव है या जो भी नया तरीका हो?
2: बिल्कुल, आज जो साइंटिस्टों ने तरक्की करी है उससे या डॉक्टर्स उन्होंने रिसर्च पे ये पाया गया जो मनोरोग का इलाज आज संभव है। पहले ऐसी धारणा थी कि मनोरोग का इलाज संभव नहीं है और लोग वाग झाड़ फूक कराने जाते थे, उनके पास चले जाते थे, वो कोई भभूति देते थे, वो एक मैजिक और रिलीजियस ट्रीटमेंट हुआ करता था जिससे व्यक्ति टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए 2-5 दिन के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन
1: मनोरोग जैसा कि उसे वो है तो उसने समझाया और उसे लगा
2: मैं ठीक हो गया है। ठीक है, जैसे कोई भूत प्रेत का आवास होना शरीर के अंदर या कोई दूसरी आत्माओं का प्रवेश करना, लोग कहते हैं इसके यहाँ तो वो आते हैं या इसके परिवार में वो आते हैं उनके, तो ये भी एक लक्षण होते हैं, तो इनके लिए पहले यहाँ जाया करता था, लेकिन अब जैसे जैसे जैसे रिसर्च होती है इस हिसाब से इलाज संभव हो गया। इलाज के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है अपनी काउंसलिंग पार्ट और एक होता है मेडिसिन पार्ट, फार्माकोलॉजी पार्ट बोलते हैं जिसके। काउंसलिंग में हम व्यक्ति की भाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं जो डिप्रेशन में की जाती है, और एंग्जाइटी में उसका एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कर सकते हैं अपन, और जैसे मैनिया एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत तेजी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसको और बहुत नींद नहीं आएगी, बिल्कुल शरीर में एकदम से ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो मैनिया नाम की बीमारी थी उसको बाइपोलर मैनिया डिप्रेशन, व्यक्ति ऐसा 6 महीने डिप्रेशन में जाता है फिर 6 महीने मैनिया में जाता है, 6 महीने डिप्रेशन तो बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, तो उसमें इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी करते हैं हम उसमें, तो वो काउंसलिंग वाले करते हैं। फिर आता है मेडिसिन वाला पार्ट। अब ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है कि व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत है या मेडिसिन की जरूरत है, तो जो व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित है उसको देखा जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं ये माइनर है तो अभी काउंसलिंग कर सकते हैं अपन, अगर मॉडरेट है और मॉडरेट टू सीवियर है, तो पहले अपन उसको मेडिसिन पे लाएंगे, मेडिसिन से लेके आगे जब वो माइनर में आ जाएगा फिर अपन उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, फिर एंड वक्त में दोनों साथ में पैरेलल चीज़ें चलती हैं और धीरे धीरे दवाइयों को टेपर करके कम कर दिया जाता है और काउंसलिंग के सेशन भी चलते हैं और इससे व्यक्ति ठीक हो जाता है पूरी तरह से।
1: यानी कि इलाज तो है,
2: इलाज है।
1: एक चीज आई थी, एक लक्षण आए थे, एक इलाज आया है। अगर इलाज न कराया जाए तो कितने दुष्परिणाम तक आदमी पहुंच सकता है?
2: अब देखिए, अगर इलाज नहीं कराएंगे अपन किसी मानसिक रोग व्यक्ति का, तो एक एक जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है सुसाइड। व्यक्ति अपने आप को सुसाइड कर सकता है, क्योंकि वो इस रोग से इतना ग्रसित हो जाता है कि ना तो उसके घर वाले समझ पा रहे होते हैं उस रोग को, ना उसके समाज वाले समझ पा रहे होते हैं उस रोग को, लेकिन वो तो ग्रसित होता है। वो कहते हैं अरे नहीं, उसको हीन भावना से देखने लगते हैं, अरे ये तो नाटक नौटंकी कर रहा है, अरे ये तो वैसे ही कर रहा है, कुछ है ही नहीं, साथ ही जाँचें तो करा ली, लेकिन आप उस डॉक्टर के पास ही नहीं गए जिसके पास आपको जाना चाहिए था उस मरीज को लेके, लेकिन वो परेशान है, वो इतना परेशान हो जाता है वो फिर एक दिन सोच लेता है इससे अच्छा है तो मर जाना बेहतर है। एक सर्वे किया गया है जिसमें पाया गया है कि इंडिया में एवरी ईयर 140,000 लोग सुसाइड से मरते हैं
1: इस कारण से।
2: हाँ, मानसिक कहीं ना कहीं 85% कारण होता है सुसाइड में, मानसिक रोग।
1: यानी जो सुसाइड का जो दर है उसमें 85% मनोरोग
2: पाया जाता है। कुछ लोग इम्पल्सिव कर लेते हैं, इम्पल्सिव सुसाइड कर लिया, एक डिसीजन ले लिया, तो वो 15% कारण होते हैं, लेकिन 140,000 एक बड़ा फिगर है। 315 लोग प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड का कारण क्या है?
1: एक मनोरोग है कि विश्व का आंकड़ा,
2: ये इंडिया का आंकड़ा है,
1: अपने आप में बहुत गंभीर है और चिंतनीय विषय है। जैसे इसको अगर उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि एक बच्चा कोई फेल हो गया और वो सुसाइड करता है, तो वो भी मनोरोग से प्रभावित हुआ?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनोरोग से प्रभावित हुआ है भाई। उसकी एक्सपेक्टेशन थी या घर वालों की एक्सपेक्टेशन, उसकी डिजायर थी, वो डिजायर फुलफिल नहीं हुई, तो उसने डिसीजन लिया अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इतना सारा प्रेशर है, क्योंकि व्यक्ति मनोरोग आया कहाँ से? आया तो आपकी उम्मीदों से ही है ना, लोगों की उम्मीदों से। व्यक्ति फेल हो गया, उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसको ये डिसीजन लेना पड़ा कि सुसाइड कर लो इससे अच्छा। तो
1: जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में कई बार आता है कि किसानों की बात आती है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मनोरोग के शिकार होते हैं, तब फिर वो जाके इस तरह के हाथ से,
2: वो बहुत पहले मनोरोग के शिकार हो चुके होते हैं, लेकिन आजकल ट्रीटमेंट गैप इतना है डॉक्टर और मनोरोगी के बीच में, 80% ट्रीटमेंट गैप है, जिसको हमको लाना है 20% पे, जो और बीमारियों पे। 80% गैप मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे 10 में से 10 बीमार है तो 2 ही आ रहे हैं।
1: हाँ, समझ गया कि 100 में से सिर्फ 20 इलाज करा
2: रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 80 को पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो 5 साल से ग्रसित है, 5 साल बाद उसने ये डिसीजन लिया कि अब मैं भाई अब तो 5 साल हो गए, इतना कोई समझ नहीं रहा क्या करूं, और साथ में कोई घटना भी हो गई, सूखा पड़ गया, ये कर गया। जैसे आपने देखा होगा गांव के परिवेश में महिलाएं बहुत हम फ्रिक्वेंट दिख रहे हैं, जहर खा के आती हैं अस्पताल में, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है। पति है तो वो कोई नशे से बुरी तरह से ग्रसित है, या कोई शराब का नशा कर रहा है, या कोई गांजे का कर रहा है, कोई स्मैक का नशा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, घर वाले मारपीट कर रहे हैं, तो उसने किसी ने कुछ सुना नहीं, तो उसने क्या सोचा अपने दिमाग में, क्या किया जाए कि चलो इससे अच्छा तो जीवन खत्म करो। तो सारी समस्या का समाधान यही है उसके लिए, क्योंकि बात नहीं सुन रहा होता है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपसे हुई और बातचीत जारी है, चूंकि समय की भी कहीं ना कहीं एक बात होता है, जिस बात का जिक्र करना जरूरी है और जिस बात को अभी हम बातचीत के दौरान नहीं ला पाए और जो इस विषय को प्रभावित कर सकती है, विषय में होना चाहिए, उस बात का जरूर जिक्र करें सर।
2: मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति होते हैं, जो समाज के परिवेश में रहते हैं, चाहे गांव में हो चाहे घर में हो, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं कि नहीं, जो ये व्यक्ति है ये ऐसा नहीं है जैसा ये पहले था, अब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको मनोरोग हो गया है। आप ऐसे ही समझ पाओगे, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे कि भाई लक्षणों के आधार पर, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम देखते हैं काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोग आते हैं जिनको सिरदर्द की बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, सब जगह दिखा ली, लेकिन कहीं नहीं जा रहा सिरदर्द, लेकिन बीमारी थी मनोरोग।
1: तो मनोरोग में यानी कि परिवार की भूमिका बहुत बड़ी
2: है। बहुत बड़ी है परिवार वालों की भूमिका, समाज की भूमिका बहुत बड़ी है उसमें। आसपास के लोग आपसे कैसे व्यवहार करें, उनको समझना, बीमारी को समझना बहुत जरूरी है भाई, जो कह रहा है आप उसको समझो।
1: ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि और परिवार और आपका जो सामाजिक दायरा है, जो आपके निकट के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा है इस बीमारी से बचाव के लिए।
2: एक और चीज कहना चाहूँगा, आजकल जो चला है नशे वाली बीमारी, ये भी बहुत कॉमन हो गई है। सब्सटेंस एब्यूज बोलते हैं, वो हमारा मनोरोग का ही पार्ट होता है जी, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे इसमें हो, काफ़ी युवा लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं और कई वो भी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका इलाज नहीं मिल रहा है, उन्हें मालूम नहीं है कि इसका इलाज संभव है, वो नहीं जानते,
1: जबकि
2: इलाज है। ऐसे ही जो शराब से व्यक्ति हो जाता है, वो सुबह शाम पीने लगता है, पहले एक टाइम पीता था, फिर कभी कभी पीता था, फिर वो एक टाइम पे आ गया, फिर वो सुबह शाम पे आ गया, फिर सुबह दोपहर शाम पे आ गया। अब एक्चुअली उसको वही दवाई नज़र आ रही है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा इलाज है तब भी है, तो अगर वो बीमारी भी ठीक है, एक नशे वाली बीमारी है जो ठीक हो जाए तो काफ़ी समाज सुधर सकता है इसके लिए।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में रहे और जो विषय था मनोरोगों से कैसे बचें, बड़ी गंभीर बात हुई और आपने इसके आंकड़े भी बताए, समझाइश भी बताई, इसके नेचर भी बताया और इलाज भी बताया। इन सारी बातों पर आपसे कई पहलुओं पर चर्चा हुई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता इस बातचीत से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: धन्यवाद, नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैया अबे अपन सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो मनोरोग कारण लक्षण एवं बचाव, क्या जानकारी दे रहे थे डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी जी और इनसे बातचीत करी थी अपाई भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल जी ने। तो भैया देखो कितने अच्छी और विस्तार से जानकारी दी इनने, जा जानकारी को सुन के हमारे भैया जरूर लाभ लेवेंगे, क्योंकि भैया ये मनोरोग ऐसो रोग है जिसे भैया हमें परिवार में अधिकतर लोगों के यहाँ मिल जाओ थे, क्योंकि मानसिक टेंशन से यानी कि मानसिक संतुलन जो हमारा खो जाते हैं उससे हमें जो रोग हो जाते हैं भैया, तो इसलिए हम जाको इलाज करा सकत हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन भैया हमें जा में हमेशा सुरक्षा और बचाव करके चलने हैं। तो भैया अब हम चर्चा को रोकत भाई, आपको मनोरंजन करवाओ थे और सुनवाओ थे जो प्यारों

तो भैया अपन ने जे प्यारो सो लोग गीत सुनो है ना, मोहन ने मुरलिया झनकारी। भैया मनोरंजन भी जरूरी है जीवन में, क्योंकि मनोरंजन के बिना सब अधूरो है। अगर अपने को अपने आप को अच्छो रखने हैं, दिमाग को भैया अपने आप को संतुलन बनाए रखने हैं, तो फिर मनोरंजन भी जरूरी हो जाते हैं। भैया अब हम अपने चौपाल कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है ना, क्योंकि घड़ी की जो सुई होते है भैया बिल्कुल इशारों कर देते हैं कि हमें जानो है। और भैया फिर हम कल वही समय पे आएंगे जो समय पे हम आउट हैं, यानी कि 7:21 पे। तो भैया कल फिर हम चौपाल कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें भैया अपने चौपाल कार्यक्रम से आज्ञा दो। सभी भैया बहनों को धर्मों की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
1: आया साहब।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
0: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
0: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
0: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
0: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दबा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
0: वही बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहाँ ना?

0: मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
1: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
0: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने आ रहा।
1: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
0: ठीक है देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
1: साहब जी
0: तुम अभी तक यहीं हो?
1: साहब
0: क्या है?
1: साहब वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
0: हाँ पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
1: नहीं साहब आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
0: क्यों?
1: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
0: ठीक ही तो बोला है।
1: ओहो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
0: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
1: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
0: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
1: वो लोग ठहरे सीधे शादे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
0: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
1: हाँ साहब हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर दरवाजा खोलो यार।
0: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है,
2: क्या मुसीबत है।
0: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
0: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
0: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रफू चलो।
0: नहीं नहीं अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ। You get ready and no more excuses, okay? भाई खूब तमाशा है। देखा मैं कब से कह रही हूँ let's get married, लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटर के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। हुँ? क्यों?
0: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? This is called pre-planning. हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
0: बहादुर बहादुर
4: आया साहब
1: ओ मेम साहब आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है।
1: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
1: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
1: नहीं नहीं मेम साहब ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
0: आइए आइए तशरीफ लाइए।
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
0: सलाम सलाम बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं
5: साहब,
0: यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
5: अरे नहीं साहब हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
5: अच्छा लक्ष्मी तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मेरी शर्माती रहोगी।

0: मिर्जा साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
1: सलाम साहब।
2: सलाम।
1: सलाम मैम साहब।
3: सलाम।
1: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे शाह ने भी शादी नहीं बनाया।
2: ये ठीक कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
0: मैम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
1: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
0: होटल में साहब?
1: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
2: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
4: मैं अभी लाता हूँ साहब।
1: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
2: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
0: नहीं साहब, नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
2: अरे भाई, ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
1: हाँ, तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
0: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
2: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
0: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
2: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ, बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
2: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना, ना।
2: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
0: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
2: वो तो नजर आ ही रहा।
0: क्या मतलब साहब?
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
0: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
2: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
0: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
2: हाँ हाँ, क्या बात है?
0: तुम्हारी बात का साहब।
2: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
0: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के, बात ये कि
1: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
0: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
2: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक थूक दे साहब। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है साहब।
2: मुझको?
0: जी
2: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: साहब? आप शादी कब करेंगे?
2: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
2: मेरी शादी? क्या मतलब?
0: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
2: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी, अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब, माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
4: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
1: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब के मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
5: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
5: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस।

0: हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
1: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
1: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर लें।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
2: चलो लक्ष्मी, सलाम मैम साहब, सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
3: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
4: थैंक यू शाह, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं शाह। अच्छा बहादुर, शादी जब शाह का हो जाए तो हमको खबर देना।
1: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
4: जरूर आएंगे मैम शाह, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम शाह। सलाम मैम शाह।
1: सलाम
4: शाह।
1: सलाम
4: मैम शाह।
0: बहादुर, इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
2: हां शाह, जाते हैं शाह।
1: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो, तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
0: Good idea. मैं बस गया और आया।
5: विम शाह जी, शाह किधर गया?
1: अंदर कमरे में तैयार होने।
5: अच्छा?
1: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
5: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मैम साहब। हाँ, हम शाह को रोज रोज समझाता था, शाह शादी कर लो, शाह शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था शाह तो, इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मैम साहब?
1: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
5: ये दोनों हमारे सास ससुर है मैम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
1: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
5: ओ नहीं नहीं नहीं मैम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था। हाँ, हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मैम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
1: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो।
5: थैंक यू मैम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का,

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना। ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची।

0: फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं बल्कि देश के स्वास्थ्य और जागरूक करने के लिए विकसित भारत बनाने का एक जन आंदोलन है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 80वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
0: तो कई समाधान लेकर के आती है इस फिटनेस वाली साइकिल और इस अवसर पर मॉडल और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा।
2: A pleasure to wake up at 4:15 in the morning to be able to make it here. So the energy was wonderful and itne sare log aaye the participate in this beautiful Fit India running for fitness. The minister of the sports as well to give us added encouragement about it. So it's wonderful. Cycling is a very simple exercise.
0: अब बात करते हैं बैडमिंटन की, क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व बैडमिंटन दिवस बना रही है। ये दिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा 2022 में की गई थी, जो 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दिन कुछ और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज ही भारत की सबसे सफलतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं।
3: She becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
0: तो एक बहुत शानदार खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स कैन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है। और अब अंत में चलते चलते वापस एक बार लॉर्ड्स में खेले जा रहे T20 विश्व कप महिला विश्व कप के फाइनल के स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहां 8 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर

48 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार

0: रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा

0: की तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं। लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के बंगाल कार्यक्रम आज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

0: कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।
1: कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज। इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन,
1: इस

0: बस वही हूँ।
1: जब जब फूल खिले, आनंद बख्शी कल्याण जी आनंद जी।
0: रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा।
1: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
0: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
1: हमराही हसर जयपुरी शंकर जयकिशन।
0: हुई शाम का ख्याल गया।
1: मेरे हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित

पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।